وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم

بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى.

0: मुशरिको, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो तुम्हारी तरह के बंदे ही हैं। अच्छा, तुम उनको पुकारो, अगर सच्चे हो तो चाहिए कि वो तुमको जवाब भी दें। भला उनके पांव हैं जिनसे चलें, या हाथ हैं जिनसे पकड़ें, या आंखें हैं जिनसे देखें, या कान हैं जिनसे सुने? कह दो कि अपने शरीकों को बुला लो और मेरे बारे में जो तदबीर करनी हो कर लो, और मुझे कुछ मोहलत भी ना दो, फिर देखो कि वो मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा मददगार तो अल्लाह ही है, जिसने किताब बरहक नाजिल की, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है, और जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो न तुम्हारी मदद की ताकत रखते हैं और न खुद अपनी ही मदद कर सकते हैं, और अगर तुम उनको सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो सुन न सके, और तुम उन्हें देखते हो कि बजाहिर आंखें खोले तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके कुछ नहीं देखते। ऐ नबी, अफ़ो दरगुजर इख्तियार करो और नेक काम करने का हुक्म दो और जाहिलों से किनारा कर लो, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हारे दिल में किसी तरह का वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है।
1: الشيطان تذكر

0: नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहराब पर 03003385569। खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: मेरा आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601001।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी ए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव। पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सवाल जो सही जवाब लिखी करे 888 ते तव्हां पंहिंजो असांजे मोकिले सघो था। ऐं जेके दोस्त प्रोग्राम फेसबुक ते ॿुधनि पिया त असांजी फेसबुक जेका आई डी आहे, असांजो जेको फेसबुक जो पेज आहे GFM88, जी हा GFM88 असांजी लिंक आहे, पेज आहे फेसबुक जो, तव्हां उन ते बि सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। ऐं जेके दोस्त खे सहूलियत नाहे SMS करण जी फेसबुक ते मैसेज करण जी, तव्हां कॉल करे असांजे तव्हां उन सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। जी हा समय असांजो नंबर तमामु आसान आहे, 10 बजे सां मोबाइल स्टूडियो में आन कंदासीं, तव्हां असांखे उन सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। त जी हा समय हमेशह चङाई कंदा रहो ऐं बुराई खां परे रहो, ऐं ॿियनि जा ऐब उघाड़ण गिला आहे, ऐं गिला तमामु वॾो गुनाह आहे, त कोशिशि कयो पंहिंजो पाड़े वारनि जो हक़ अदा कयो, जीअं नथा कयो जीअं चवंदा आहिनि त ॾियो न त ॾुखायो बि न, त कोशिशि कयो पंहिंजनि सां पाड़े वारनि सां सभिनी सां हिकिड़ो जेको वर्ताव आहे उहो सुठो रखणु घुरिजे, छो त इंसान जी हयाती का ख़बर नाहे त कॾहिं आहे, केतिरी आहे ऐं कॾहिं पूरी थिए थी, छो त दुनिया दम गुज़र आहे ऐं हीअ दुनिया मुसाफ़िर खानो आहे, हिकिड़ा आया ॿिया विया ऐं हिकिड़ा तयारीअ में आहिनि। त साईं मुंहिंजा इंसान खे जेकॾहिं ख़बर हुजे हा त सुभाणे या ॿिए ॾींहुं मुंहिंजो मौत आहे त उहो कॾहिं गुनाह ई न करे हा, पर इहो इंसान जी जेका आहे सो इंसान खे का ख़बर नाहे त मां हिते मुसाफ़िर केतिरो वक़्तु आहियां, का ख़बर कोन्हे का, त कोशिशि कयो चङाई जेका आहे उहा बहितरु आहे, बहितरु अमल आहे, ऐं ॿियनि जी दिलि आज़ारी न कयो, छो त दिलि में अलाह रहंदो आहे, ऐं कंहिंजी बि कंहिंखे बि तकलीफ़ न ॾियो जीअं मां हुनखे ॾुखु पहुचे ऐं हिन जी दिलि आज़ारी थिए।

जी हा, मुझा प्रोग्राम रोशन सुबह में मां के सवाल नोट करायो आ किन दोस्तन बुधो है किन न बुधा छो तो स्टेशन हलन पे जैमें सखर है मीरपुर खास है मोरो है जैमें मेहरापुर मेहरापुर असि कवर करे थी कंडियारो नौशरो फेरोज मोरो भी असो नौशरो फेरोज कंडियारो की कवर करे पई सकरंड स्टेशन है वो अस नवाबशाह जिलो कवर करे पई जी अस मटियारी है वो अस हैदराबाद जिलो कवर करे पई जी अस मातली है ठटे बदीन के कवर करे पई तो काफ़ी दोस्तों मुझे सवाल जो है मत न भी बुध हो तो सवाल नोट कराइंदस वह गुजरात नोट कराइंदस इन हफ्ते मुझे जो है उजा भाइर अखियन का नाबीन ब्लाइंड अखियन के नज़र का महरूम आन हि अज जो ढी उन नाव पे क्या हि जो अजोको प्रोग्राम आ उन दोस्त के नाव कदस मुझे सवाल जो है मुझे जो गुजारत है तो वह कड़ी शे है जी अस भाइर नाबीन भी उनके ऐसी सन था जो असा दोस्त ब्लाइंड उ भी उनके ऐसी सन था वह कड़ी शे है जी हाँ असो सवाल यो है कुछ दोस्त जी अस प्रोग्राम हाँ हाँ जैसे रेडियो सेट ऑन किया या पे दफो रेडियो के बुधन पाया तो मैं उनके मैसेज करने आसान तरीको बुधाई हल मोबाइल के राइट ऑप्शन में वो उत एल आर के लिखी स्पेस दी स्पेस का बाद नालो पाँ गोठ सिटी जो नालो ए सवाल जो सही जवाब लिखी कर 888 से तुम सेंड कद जिन दोस्त के सहूलत है फेसबुक से तो अस आईडी है GAFM88 जी हाँ GAFM88 की आईडी असो फेसबुक जो पेज आ तो उन भी पाँच सवाल जो सही जवाब मोकिले तुम मोबाइल नंबर से भी असा नोट करा सको सवाल जो सही जवाब असो नंबर है 0333-1322-88 जी हाँ नंबर भी तमाम आसान है नंबर है 0333-1322-88 असांजी गुजारत असांजो सवाल है तो वह कड़ी शै है जैके असांजे नावीन भाईर भी ॾिसी सघनि था जी हा समय असांजे मुल्क में असांजे इलाइक़े में आबकिराणी जो बि हिकिड़ो ॾींहुं हूंदा आहिनि तव्हांखे इहा ख़बर आहे त आबकिराणी छा आहे जेके असांजा पंहिंजो दरिया आहिनि पंहिंजे जेके असांजा जाबुलू इलाइक़ा आहिनि असांजा मथियां इलाइक़ा आहिनि उतां जेका बर्फ़बारी ॻरंदी आहे ॻरण खां बाद में उहो आबशार वसीले पाणी हेठि किरंदो आहे जबलनि तां जेके असांजा वॾा वॾा जबल आहिनि पाणी किरंदो आहे उन खां बाद में नंढियूं नंढियूं जेके नालियूं आहिनि ऐं उन में जेके किनारा आहिनि उतां पाणी आहिस्ते आहिस्ते वहंदो ईंदो आहे ऐं जेको आहे सो उन खां बाद में हिकिड़ियूं वॾियूं पंहिंजो पहाड़नि खां गुज़रंदो ऐं दरियाहनि में नंढा नंढा दरिया हूंदा आहिनि नंढनि दरियाहनि खां बाद में वॾे दरिया में असां जेको सिंधू दरिया आहे उन में जे पाणी पहुचंदो आहे जेके असांजा पंज दरिया आहिनि रावी आहे चुनाब आहे सतलज आहे झेलम आहे अचे इहे दरिया असांजे सिंधू दरिया में पवंदा आहिनि सिंधू दरिया मां पाणी ईंदो आहे वरी असांजा उतां हर पंहिंजो इलाइक़े खां बैराज हूंदा आहिनि बैराजनि खां बाद में उतां ॿिन्ही पासनि खां दरिया जे ॿिन्ही पासनि खां केनाल निकिरंदा आहिनि केनाल मां बैराजूं निकिरंदियूं आहिनि बैराजनि मां शाखूं निकिरंदियूं आहिनि वाह निकिरंदा आहिनि त बरसाति जॾहिं थींदी आहे असांजी इहो ख़ासि करे मौसम अगस्त महीनो या सेप्टेंबर महीने में बरसातूं थींदियूं आहिनि त दरियाहनि जा बंदु टुटंदा आहिनि शाखुनि जा बंदु टुटंदा आहिनि ऐं जेके केनाल आहिनि उन्हनि जा बंदु टुटंदा आहिनि खंड लॻंदा आहिनि त पाणी जेको आहे सो ज़ियान बि थींदो आहे नुक़सान बि थींदो आहे फसलनि जो त इन जे हवाले में असांजो रेवेन्यू इदारो आहे असांजो जेको आबकिराणी जेको हुनजो सीज़न हूंदी आहे उन में हुनजी ड्यूटी तमामु घणी सख़्तु हूंदी आहे त कोशिशि कयूं त असां पंहिंजे पाणीअ जो ज़ियान न कयूं ऐं असां पंहिंजे जेके असांजा आबकिराणी जा जेके दोस्त आहिनि असां उनखे उहा गुज़ारिश कयूं त जंहिंजी ड्यूटी आहे जेके बेलदार आहिनि जेके दारोगा आहिनि जेके इंजीनियर आहिनि उहे पंहिंजो सुध संभाव कंदा ऐं पंहिंजो हुन ते चकर पंहिंजो लॻाईंदा त किथां को रुण त कोन थी लॻे किथां जेको आहे सो बंदि टुटे त कोन थो ऐं कोशिशि कयूं त जिते थोरो बि बंदि टुटल आहे असां हुते बंजू विझी मिटी विझी भरा कयूं ऐं जिते वण ॿूटा आहिनि उन जो ख़ासि ख़्यालु रखूं बहरहाल असां उन नुक़सान खां बची सघूं था।

0: मोरू,
1: नौशेरो,
0: मीरपुर खास,
1: लाड़काना,
0: सक्खर,
1: गूंज रही है हर जगह पर
0: सिंध की आवाज।
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: वजीर इलाकाई अमुन इस्तेकाम के फरोग में पाकिस्तान के हथियारबंद फौजन के पेशावराने किरदार के सराहा।

0: पीटीआई बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस अडियाल जेल मुंतकिल। पीटीआई बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सब सिक्योरिटी हेठ वापस अडियाल जेल आंदो वो जरिए मौजूद पीटीआई बानी के अडियाल जेल में वापस जेल मुंतकिल है। डॉक्टर की छह रुकनी टीम पीटीआई बानी जो भी मुआयनो किया टेस्ट सैंपल वरता। पीटीआई बानी की आमद का अग शिफा अस्पताल के एग्जीक्यूटिव फ्लोर के सब जेल करार दई। अस्पताल के स्टाफ के मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पाबंदी लागू कई वही। अस्पताल बहरा पुलिस का वा ताला मुकर्र थे। आईजी इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम को जायजो वरतो। पीटीआई बानी के जेल का अस्पताल मुंतकिली वे मामले में मुशावरत लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ से घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। जरिए मौजूद घरू वजीर वजीर आजम के पीटीआई बानी अस्पताल मुंतकिली बाबत ब्रीफिंग दिनी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है तो पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिली बाबत इंतजाम सभी के सामू आन। मुझे इतलाह मौजूद बानी पीटीआई सेहतमंद है खेस अड़ी का भी बीमारी ना जै सबब खेस घणे अरसे तीन अस्पताल में रखो वे।
1: फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑफिसर को इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें। और जो
0: वजीर आजम अपोजिशन के बीहर गाल आज कर छी वफाकी काबीना के इजलास के खिताब कदे शहबाज शरीफ ताड़ी बिन हथन से वजंदी है। अग भी हाँ भी चवं तो अपोजिशन से गाल तैयार आयो। अपोजिशन मामला गाल जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत के हथी मिली सके।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में बे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
4: सुना साईं कुछ खबर अथव
5: छा थियो सोणी
4: बिंदियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे नई बैटरी कदे आणींदा
5: सोणी हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ई कोन्हे पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा
4: साईं पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी
5: न न सोणी सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी
4: वाह वाह पोइ साईं जल्दी करियो हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो
5: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो असां वटि भॻल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे
6: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर यूपीएस इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिण लॻाया वञनि था
5: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा सरगोदा बैटरी सर्विस म्युनिसिपल स्टेडियम नज़्द नजम मेडिकल स्टोर वारी गिटी पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक मोबाइल नंबर 03156829924
6: खुशखबरी हाणे लाहौर ऐं कराचीअ जे अस्पतालुनि मां तरबियत याफ़्ता चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद नबन शाह बुखारी MBBS FCPS सीनियर डॉक्टर ट्रामा सेंटर लाड़काणो साबिक़ रजिस्ट्रार पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसिस ऐं गंगा राम अस्पताल लाहौर लाड़काणे शहर में ख़िदमतूं सरंजाम ॾेई रहियो आहे माहिरे अमराज़ नमूनिया TB ॿारनि ऐं वॾनि में दम हर क़िस्म जो सहको सिगरेट ऐं दूहे जे करे साह जी दायमी बीमारी छातीअ में पाणी गंद या हवा भरिजी वञण सीने में सूर फिफड़नि जो सुकड़जी वञण मोटापो ऐं निंड दौरान साह जो रुकजण पुराणो नज़लो ज़ुकाम ऐं साह मुझण पुराणी खंघि बलगम में रतु अचण निड़ीअ में बार बार रेजस लहण ऐं बार बार निछू अचण ऐं नकु बंदि थियण फिफड़नि जे कैंसर जी तशख़ीस ऐं फिफड़नि ऐं साह जे तमामु बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर सैयद नबन शाह बुखारी क्लिनिक टाइम रोज़ानो शाम जो 4:30 खां राति जो 8 ताईं आचर सुबुह जो 10 खां मंझंदि 3 ताईं एड्रेस मेहरान मेडिकल सेंटर
7: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003855569
8: अस्सलाम वालेकुम अदा
9: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
8: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
9: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
8: न अदा
10: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
8: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
9: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
8: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
10: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
9: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
11: 03013992836
12: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

अजी समय ने प्रोग्राम रोशन सुबह वा मुद पया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ता आई मावा जो मेजबान ने मतला जुने जो समय जा प्रोग्राम रोशन सुबह में असा जो सवाल आहे खास करे उनन भाइरन लाए जे के असा ब्लाइंड आहेन अखन का नाबीन आहेन उनन लाए ही मुजो खास प्रोग्राम आहे मुजो सवाल खास करे उनन लाए आहे त उहा केड़ी शय आहे जे के उनके नाबीन भी ॾिसी सघनि था जेके अखियुनि खां महरूम आहिनि उहे बि उनखे ॾिसी सघंदा उहा कहिड़ी शइ आहे ऐं तव्हां असां ॾे उन सवाल उन गुजारत जो सही जवाबु असां ॾे मोबाइल ते मैसेज में बि तव्हां असां ॾे मोकिले सघो था फेसबुक ते बि मोकिले सघो था ऐं असांजे मोबाइल नंबर ते बि कॉल करे तव्हां असांखे नोट कराए सघो था असांजो नंबर आहे 0333221322888 समझा असांजो पाकिस्तान अलाह साईं जे नेमतुनि सां भरियो पियो आहे ऐं असांजे प्यारे मिठड़े मुल्क पाकिस्तान में दुनिया जी हर चीज़ हर शइ मौजूदु आहे जेके ॿियनि मुल्कनि में हथरादू शयूं ठाहियूं वञनि थियूं पर असांजे मुल्क में उहे शयूं ओरिजिनल आहिनि जीअं तव्हां ॾिसो त ॿियनि मुल्कनि में हिकिड़ा वॾा पंहिंजो जबल ठाहे करे उन ते आबशार ठाहिया वेंदा आहिनि जे पाणी उन तां किरे ऐं उनखे ख़ूबसूरत नज़ारा ठाहिया वेंदा आहिनि पर असांजे मुल्क में कुदरती उहे आबशार उहे जबल ऐं हिकिड़नि जबलनि ते पंहिंजो सरसब्ज़ उहे वण ॿूटा मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं उहे असांजा घुमण वटां ॾिसण वटां हूंदा आहिनि ऐं असांजे मुल्क में जेके मैदनी शयूं आहिनि त सिंध में या पूरे पाकिस्तान में तेल आहे गैस आहे कोयलो आहे जबल आहिनि चश्मा आहिनि आबशार आहिनि ऐं सम्झा कुझु अहिड़ा मुल्क आहिनि जिते जंहिं कंहिं मुल्क में ट्रेन कोन्हे यानी रेल न हूंदी आहे पर असांजे मुल्क में अलहमदिल्ला ट्रेन जा काफ़ी जेको आहे सो इलाइक़ा जिते ट्रेन गुज़र थिए थो सफ़र थिए थो हुन में ऐं ॾिसो त असांजा पंहिंजो पाकिस्तान में अहिड़ा मेवा बि आहिनि जेके मुंद वारा मेवा बि आहिनि त अणमुंदाइता मेवा बि आहिनि जेको अलाह साईं असांखे खाराए पियो ऐं तमामु घणियूं शयूं असांजे मुल्क में ऐं असांजे मुल्क में कपिड़ो ठहे थो ऐं असांजे मुल्क में फसल जंहिंमें सारियूं यानी चांवर पंहिंजो पैदा थिए थो कणिक पंहिंजी पैदा थिए थी कपह पंहिंजी पैदा थिए थी तमामु घणा फसल ऐं पंहिंजो मेवा सब्ज़ियूं हर क़िस्म जी शयूं असां वटि मौजूदु आहिनि ऐं ॿाहिरि मुल्कनि सां जेको असांजो वण जो वापारु थिए पियो ऐं असां जूं शयूं ॿाहिरि वञनि पियूं एक्सपोर्ट थियनि थियूं ऐं ॿाहिरियूं शयूं असां वटि अचनि थियूं त इहे अहिड़ियूं शयूं बि ॿियनि खां मुल्कनि खां घुराई बि वञनि थियूं पर काफ़ी असांजे मुल्क जूं शयूं असांजे मुल्क जी पैदावार ॿाहिरिनि मुल्कनि वञे पई त हीअ असांजे पाकिस्तान में दुनिया जी हर शइ मौजूदु आहे जेका ॿियनि मुल्कनि में न बि हूंदी आहे पर असांजे मुल्क में बिल्कुलु मौजूदु इहो असांजो प्यारो मुल्क पाकिस्तान आहे असांजो मिठड़ो मुल्क पाकिस्तान आहे छो त इन करे इहो यादगीरो अची वियो त 14 अगस्त त असां मल्हाए चुका आहियूं पर महीनो अगस्त हले पियो पर दिलि खे जेको आहे सो जी 69 जेका आहे उहा दिलि में महसूसु थिए पई ऐं महसूसु कयूं पिया त अञा असांजे 14 अगस्त जे हवाले सां अगस्त महीनो हले पियो पर दिलि चयो त कुझु तव्हांखे इहा मालूमात पहुचायां ऐं वरी हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो अव्हां जे नाह पिया कयूं

अजिहा समय न प्रोग्राम रोशन सुबुह में असो नौजवान शायर शेख फराजी जो गज़ल वहाँ तई पहुँचाइंदुस। मुझो चैन करार शहर में गुम थी वो, मुझो चैन करार शहर में गुम थी वो, गुलड़न जड़ो प्यार शहर में गुम थी वो। अड़े रीत वो हो मुखा झट गुजरी, जण हो नंढड़ो बार शहर में गुम थी वो। रक्षण जो दूहो गोड़ हो काफ़ी, सोरठ जो सिंगार शहर में गुम थी वो। सोचम जैसा रोई हल्को बार कया, सो मानो हर वार शहर में गुम थी वो। तोखे गोले गोले शेख फराजी अज, तुझो ताबेदार शहर में गुम थी वो।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: खुशखबरी। क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो। गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधण उनन सबनी बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने तो। राबते लए 03011 96 851।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐ रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐ 02424601000।
5: उम्मीद के दिए जलते हैं
6: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03018 65 45 3।
7: अस्सलाम वालेकुम अदा।
8: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
7: अदा? नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
8: अदा? दुकान जी मशहूरी कराई थई
7: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
7: मुझे दुकान जी बेड हलंदी।
8: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
7: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेहरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर।
8: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836
3: मोहम्मद उमेर गोरी 03151 15 5724।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

जी असमिन प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां इमाम जो मेज़बान नेमत लाइ जुणे जो अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर हा जी असमिन जा असांजो जेको अॼु जो सुवाल हो असांजे भाइरनि लाइ ख़ासि करे असां अॼु उन्हनि भाइरनि खे यादि कयोसीं जेके असांखे त हमेशह यादि कंदा आहिनि पर असां उन्हनि जूं जेके मुहबतूं जेको असां उन जो प्यारु हुननि जे दिलि में आहे असांजे लाइ त असां हीउ अॼोको जेको प्रोग्राम असां जोड़ियोसीं असांजो नाबीना भाइरनि लाइ हुयो त अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेके दोस्त नाबीना भाइर आहिनि जेके नज़र अखियुनि जे नज़र खां महरूम आहिनि उन्हनि लाइ हिकिड़ो मुंहिंजो सुवाल हुयो त असांजा जेके दोस्त आहिनि नाबीन आहिनि उहा कहिड़ी शइ आहे जेके ॾिसी सघनि था हमेशह हर शइ त माण्हू पाण जेको अखियुनि वारो आहे ॾिसे थो ऐं असांजो नाबीन दोस्त उन शइ खे न पियो ॾिसे पर उहा कहिड़ी शइ आहे जंहिंखे असांजा नाबीन भाइर बि ॾिसी सघंदा आहिनि त साईं मुंहिंजा काफ़ी टाइम थी चुको आहे ऐं प्रोग्राम जेको आहे सो 10:46 थिया आहिनि ऐं आख़िरी लम्हा आहिनि प्रोग्रामनि जा त साईं मुंहिंजा तव्हांजा सुवाल बि असां ताईं जवाब बि असां ताईं पहुची चुका आहिनि तव्हांजा नाला बि ज़रूरु खणंदासीं त असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं त हीअ दुनिया हिकिड़ो वणु आहे ऐं असीं उन जा मेवा आहियूं ऐं असां मां जेकी अञा ख़ाम ऐं कचा आहिनि से ई दुनिया खे मज़बूत हथ विझी चिंबड़ियल रहनि था पर जेकी रोशन दिलि शख़्स आहिनि से दुनिया सां तालुको टोड़ण में वेरम ई कोन था कनि ऐं साईं मुंहिंजा जंहिंखे हक़ानी मुहबत मेठाज नसीब थिए थी तंहिंखे दुनिया जी मुर्क हिकु लज़त फिकी ऐं बेसवाद पई लॻंदी आहे ऐं उहे कॾहिं बि दुनिया खे कंहिं बि फंद में जे उन में नाहिनि फासंदा त कोशिशि कयो त असां मेवा कचा हुजऊं या पका हुजऊं पंहिंजे इंसाननि सां पंहिंजे दोस्तनि सां प्यारु कयूं ऐं पंहिंजे वतन पंहिंजे मुल्क पाकिस्तान सां प्यारु कयूं कंहिंसां ॿियाई न कयूं त वधीक बहितरु आहे हीउ कलाम ॿुधूं पिया पोइ अव्हां जा नाला अव्हां ताईं सवाल जो सही जवाब बि पहुचाईंदासीं।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां ताईं अवां जा नाला पहुचाईंदासीं। साईं जा अवां ताईं नाला बि पहुचाईंदासीं, सवाल जो सही जवाब बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं। असांजे जेको सवाल जो सही जवाबु आहे त उहो ख़्वाबु आहे जेका असांजा नाबीन ॿाहिरि ॾिसनि पिया। जी हा समिन, त असांजो उन्हनि सभिनी नाबीन दोस्तनि खां उन्हनि ॿाहिरनि खां असांजो सवाल ख़ासि करे हुयो, जो असां प्रोग्राम में असां उनखे वधीक असां अॼु अहमियत ॾियूं पिया, इन जे करे त उहे वीचारा असांजो प्रोग्राम पाबंदी सां ॿुधंदा आहिनि ऐं शौक़ सां ॿुधंदा आहिनि ऐं असांखे हमेशह यादि कंदा आहिनि। शामिलु कुझु दोस्त थी सघंदा आहिनि, कुझु न बि थी सघंदा आहिनि, त उहो ख़्वाबु आहे। सवाल जेको सही जवाबु आहे उहो ख़्वाबु आहे जेके असांजा नाबीन ॿाहिरि ॾिसंदा बि आहिनि ऐं कुझु अहिड़ा दोस्त जेके ॼाए ॼम खां नाबीन हूंदा आहिनि, जेके पंहिंजो कुझु शयूं ॾिसी न सघंदा आहिनि पर जेके कुझु वक़्तु हली करे अखियुनि जी रोशनी हुनखे हूंदी आहे ऐं बाद में जॾहिं वीचारा कंहिं हादसाती तौर ते नाबीन थींदा आहिनि त उहे बिल्कुलु तमामु सुठे नमूने सां, चङे नमूने सां, चिटे नमूने सां ख़्वाबनि खे ॾिसंदा आहिनि। ऐं जेको आहे सो इहो सवाल जो सही जवाबु, ऐं काफ़ी दोस्त असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण लाइ फ़ोन कई, कॉल कई ऐं कुझु दोस्तनि जो जवाबु सही बि हुयो, ग़लति बि हुयो। पठाण खान खोसवाए फुल जी स्टेशन खां ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो ऐं ॻोठु वांडकी खां बादल शेख ऐं पाबो वेरो खां दिलीप कुमार नवल राय। दिलीप कुमार पाण नाबीन आहे भाउ ॿुधायो, ऐं उनजो जवाबु बि सही हुयो। लटको मोरी खां ममन साले लिगारी ऐं शाहनवाज़ महर मुख्तियार अली राजपुर शकील राजपुर राणीपुर खां ऐं ॻोठु हबीब थेबो खां तयब थेबो ऐं मोलाबख्श चांडियो लाड़काणे खां जंहिंखे सवाल जो सही जवाबु न आयो। फ़तेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद बेबी शुगफ्ता नाज़ कनासरो ॻोठु सराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ऐं समुझा कुझु दोस्तनि जा अञा नाला आहिनि ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहिनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। सोराबली मंगरियो ॻोठु सचीरणो मंगरियो खां अज़ीज़ सोलंगी भुट्टो सोलंगी ऐं नूर अहमद सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां ॿाहिरनि जो जवाबु बिल्कुलु दुरुस्त हुयो। आसिफ अली चाचड़ वासिफ अली भुगती लाड़काणे खां ऐं आसिफ अली पाण ब्लाइंड आहे पर सवाल जो सही जवाबु कोन ॾेई सघियो। इक़बाल लाचारी झलोरी खां ऐं खालिक लाचारी झलोरी खां इनजो बि जवाबु बिल्कुलु ग़लति हुयो ऐं यासमीन मलिक मीरपुर ख़ासि खां उनजो बि बिल्कुलु जवाबु ग़लति हुयो ऐं क़ुर्बान ख़ासकेली झंडो मरी खां दोस्तनि जो जवाबु ग़लति हुयो ऐं असांजा गुलाब खान कुंभर ॻोठु कंगन खां उनजो बि बिल्कुलु जवाबु सही हुयो। तुफ़ैल मंगी ॻोठु खान मोहम्मद झिंझण खां उनजी वॾी महिरबानी, जवाबु बिल्कुलु दुरुस्त हुयो ऐं ॻोठु पुनू खान पंवर खां रुस्तम अली पंवर दोस्त जो सही जवाबु हुयो, सेवण लॻ ॻोठु आहे ऐं ॻोठु फाज़ुल कलड़े खां रियाज़ कलड़ो भाउ जी वॾी महिरबानी। मसूद जमाली सखर खां भाउ जो जवाबु बिल्कुलु दुरुस्त हुयो ऐं दादू खां ज़ाहिद जतोई ऐं फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी खे पंहिंजो सवाल ई जवाबु ई कोन पियो अचे, ग़ुलाम सेन जलालाणी ॻोठ खां ऐं असांजी अधी भेण फ़ोन कई ऐं ॾुख बि थियो, अफ़सोस बि थियो। भेण इहो ॿुधायो, सीमा असांजी कटबर ऐं अधी रुखसाना कटबर ज़ोहेब ऐं बिलावल ॿ भाइर ऐं ॿ भेनर बिलाइंड आहिनि अलाहाबाद मोहले लाड़काणे खां ऐं उन्हनि सवाल जो त सही जवाबु ॾिनो पर अफ़सोस जो ॿ भाइर ऐं ॿ भाई भेनर बिलाईंदा आहिनि। मां उनजो शुक्रियो अदा थो कयां जिन असांजे प्रोग्राम खे ॿुधो बि, यादि बि कयो। वरी मां उनजा नाला खणंदुसि, अधी सीमा बिलाईंदा आहे, अधी रुखसाना बिलाईंदा आहे, भाउ ज़ोहेब बिलाईंदा आहे ऐं बिलावल कटबर बिलाईंदा आहिनि, ॿ भाइर ॿ भेनर ऐं असांजो फरमान अली अबड़ो बि बिलाईंदा आहे, अतुर खान अबड़ो जो ॻोठु आहे ऐं घोटकी ज़िले खां इहो भाउ बि बिलाईंदा आहे, उनजी वॾी महिरबानी जो असांजे प्रोग्राम में शामिलु ऐं भाउ ॿुधाए पियो त मां 15 सालनि खां बिलाइंड आहियां, जो काफ़ी मां अॻु बस जो कंडक्टर हुयुमि पर कंहिं हादसा जे तौर ते वीचारो उहो बिलाइंड आहे, उनजी वॾी महिरबानी जो दिलि सां असांजो प्रोग्राम ॿुधो ऐं प्रोग्राम में शामिलु थियो, उनजी वॾी महिरबानी। ऐं दोस्त कुझु फेसबुक ते बि आहिनि असांजा, नज़ीर खोसो भाउ सूबतपुर बलूचिस्तान खां, मोहम्मद खान कुंभार जमाल कुंभार बि फ़ोन कंदा आहिनि झलोरी स्टाफ मीरपुर ख़ासि खां ऐं रेहाना खान बखर खां उनजी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया ऐं जलाल चांडियो कलाम बि तव्हांजे बैकग्राउंड में हलाईंदासीं, ॿुधाईंदा रहंदासीं ऐं कुझु दोस्तनि जा नाला बि अवां ताईं पहुचाईंदासीं, उनजी वॾी महिरबानी जेके असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया, लख कुर्ब ॿाहिरनि जा।

0: चाहिए FM 88
1: सिंध की आवाज
2: कंहिं भी क्या खबर ना है यह गाल याद रखो तो जै शे जो असां के पक्का है जै शे जी असां के पक्का हुंदी है वो है मौत केॾी महिल बि अची वेंदो ऐं जंहिं शइ जी पक ई न आहे हूंदी त ज़िंदगी केतिरी आहे त असां जुस्तजू उन लाइ पिया कंदा आहियूं त ज़िंदगी में हमेशा मुस्कराईंदा रहो खिलंदा रहो हमेशह असांजो इहो ई मैसेज रहियो आहे त ज़िंदगी ख़ुशगवार गुज़ारियो खिलंदा मुस्कराईंदा गुज़ारियो त प्रोग्राम में हिकिड़ो सॉन्ग बि शामिलु कंदा हलंदासीं हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे प्रोग्राम में शामिलु थियण जो तरीक़ेकार बि हिकु दफ़ो ॿीहर मां ॿुधाईंदो हलां त पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस टू स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजो ॻोठ या शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते

इखनाल जो खूबसूरत आवाज़ तव्हांजो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मिठा थियनि। दोस्तनि जा कुझु मैसेजिस बि आहिनि, उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं। गॾो गॾु तव्हांखे भला भला सॉन्ग बि ॿुधाईंदा हलूं। त असां सां प्रोग्राम में गॾाए ॻोठु दूरो बीहण खां शौकत अली बीहण, नादर अली बीहण, अली गुल बीहण, अदा दूरो बीहण वारा भाउ मुंहिंजा शौकत, नादर ऐं अली गुल, वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां मुंहिंजे शो में शामिलु थिया आहियो। लख रुपए लख अहसान तव्हांजा। ऐं अदा जन चवनि था गुलाब सलाम, त वालेकुम सलाम मुंहिंजा मिठा। हुमर चन्ना जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे, जेको डेडिकेट कनि था ज़ैन बीहण ऐं ज़रियाब बीहण, रियाज़ अली बीहण खे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, ज़ुल्फ़कार खे सलाम चई छॾिजो मुंहिंजे तरफ़ खां, ऐं उन खे बि हिकिड़ो सॉन्ग ज़रूरु डेडिकेट करे छॾिजो। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, ख़ुशि हुजो। असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे मोहम्मद इब्राहिम संदीलो, ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो, ऐं चवनि था मूंखे रऊफ़ मक्सीअ जो सॉन्ग ॿुधायो। त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हांखे रऊफ़ मक्सीअ जो बि सॉन्ग ॿुधाईंदासीं। लख कुर्ब आहिनि तव्हांजा, तव्हां असांजा पुराणा लिसनर आहियो, तव्हांजे लाइ खोड़ सारी मुहबतूं आहिनि, प्यारु आहे, ऐं तव्हां असांजे शो में अहिड़े तरीक़े सां शामिलु थींदा आहियो। त असां सां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान, खोसो, महिरबानी अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे शो में शामिलु थिया आहियो। लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा मुंहिंजा मिठा साईं। लटको मोरी सांगड़ खां मोहम्मद सालेह लिगारी बि पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, ऐं चवनि था प्रोग्राम लाजवाब आहे। त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, अलाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आबाद रखे। ॻोठ पाबू वीरो थरसा, अच्छा थर खां ही दोस्त जेको आहे दिलीप कुमार पाण खे ॿुधी रहियो आहे, ऐं अदा जन सां गॾु आहे कुमार मेघवाड़ ऐं नवल रा मेघवाड़ ऐं दानिश कुमार, ऐं अदा जन चवनि था त शो ज़बरदस्त आहे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिलु थी सघो था, ऐं शो में शामिलु थियण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस, ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां न 888 ते। अच्छा, उन सां गॾो गॾु ॿी बि तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा हलंदासीं, त तव्हां असांजे शो में शामिलु थियो था त पंहिंजी एडवाइस बि ज़रूरु ॾींदा कयो प्रोग्राम जे मुतालिक़, उहा एडवाइस हुजणु घुरिजे, उहा बि तव्हां ॾींदा त उन सां असांखे अञा हिन प्रोग्राम खे वधीक बहितर खां बहितर बनाइण जो जेको आहे न उहो असांखे तव्हांजी राय जे मुताबिक़ असां उनखे अञा वधीक सुठे खां सुठो करण जी कोशिशि कंदासीं।

सनम सुहणो हुजे साकी पीअण वारा किथे मिलंदा त लैला सिस्टर्स जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे त मुंहिंजे मिठा ताईं वक़्तु थी पियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं काफ़ी महिरबानी दोस्तनि जा मैसेजिस मुंहिंजे साम्हूं बीहनि जन पंहिंजे ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत हथनि सां ऐं दिलि ऐं चाहत सां लिखिया आहिनि उहे मैसेज उहे बि प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कंदासीं ऐं तव्हांजी पसंदि जी चूंड मौसीक़ी बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं हाणे ईअं आहे त वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़ ब्रेक खां वापसि ईंदासीं वापसि ईंदासीं त तव्हांजा ॿिया बि मैसेज मुंहिंजे पैनल ते मौजूदु हूंदा प्रोग्राम जे आगाज़ में तव्हांजा मैसेज शामिलु करे तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जा सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदा तेसिताईं तव्हां छा कंदा कुझु बि न कंदा ॿुधंदा रहंदा जी एफ एम नेटवर्क

0: It's 11:30 a.m. This time check is brought to you by.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

रऊफ बख्शी जो खूबसूरत आवाज़ चए तो डायरेक्ट वेह दिल में मुफ्त जो घर मिले तो जी आई नहीं हों घर मुफ्त जो हों तकड़ में मूँ वेही वो पर वे उन जी तकलीफ थी है ना वो अंदी है उनको जो अहसास है वो बीनू चवण हों तमाम घो ही खतरनाक हों दोस्तों मैसेजेस आज असानी शो में शामिल कदा था हलूँ अस्सलाम वालेकुम भा गुलाब खान कड़ा हाल है नवाजा वालेकुम असलम भा मुझो है फुल जी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो अदा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया तुम बुधा तुम कि ठीक है तवी तबियत सही है उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हारे खैरियत कई होंगी मुझे वेठा सही मुझे तरफ का अवे खोड़ दफा भलीकार तुझे प्रोग्राम में शामिल थे गुट मोहम्मद तैयब तुनियों का हबीबुल्ला तुनियों प्रोग्राम बुध रो है चवन था सॉन्ग बुधराजो चंड जो टुकड़ो लगे तो अज तो तू शमन अली मीराली की आवाज में है शमन अली मीराली यार ढो जबरदस्त सिंगर है मुझे पसंदीदा है बिल्कुल कोशिश कदासी अदा हबीबुल्ला तवे पसंद सॉन्ग बुधाया गोठ ममन तैयब खां हबीबुल्ला भाजन जो बो मैसेज ए सागी उन में फरमाइश लिखल है प्यारा बिल्कुल तवी पसंद जो सॉन्ग अस जरूर प्ले कदासी गोठ हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी या मोरी है या मरी है उनका कुर्बान अली खास के लिए प्रोग्राम बुधे पो मेहरबानी अदा तवी तुम शो में शामिल थे कुर्बान साई तुम सदाई शो में शामिल उन लख कुर्ब लख एहसान गोट मोहम्मद तैयब का अदा हबीबुल्ला जो ही टो मैसेज आयो है बिल्कुल अदा तक पक से हाँ मैं बुधाइंदम तुम बेफिक्र वो मेहरबानी प्यारा तुम शो में शामिल थे फुलजी स्टेशन का प्यारो भा किराए डॉक्टर हसीना सुमरो डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरे जो साहिबा आजाद अली खोसो पांजो प्रोग्राम बुधन पिया मेहरबानी तवाजी अदा चवन था अस्सलाम वालेकुम प्यारा भा गुलाब खान वालेकुम असलम अदा खुश हो जो आबाद हो जो मेहरबानी तानी खान वान का वाहिगुरु खास के लिए जो ही बो मैसेज मुझे शो में शामिल मेहरबानी प्यारा तवाजी भी तुम प्रोग्राम में शामिल थे आयो लख कुर्ब तवाजा लख एहसान त प्रोग्राम में तवे हुमेरा चन्ना जो खूबसूरत आवाज है उन्हीं की तरफ हली कर हुमेरा चन्ना के आवाज में सॉन्ग बुधाइंदा छो उन ब फरमाइशू अची चुकी हुई तो सोचो थी तो हुमेरा के हाँ मौको दीजिए

0: ये FM 88 Network सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

सदा मौजूद अदी असि लिखी डायरेक्टर हसीना सुमरो बदीन खान लिखी रही है चवे थी अदा सवे असो मैसेज गलत पढ़ो हुए बिल्कुल इं ही हुए गलत मुखा मैसेज पढ़ी वो हों शायद स्पेस की जी है ना तुम जो मैसेज लिखो हो ना उन स्पेस मुकमल खत्म हुई जी गडल सदल मैसेज हु जैसे कर गलती थी वही डॉक्टर हसीना सुमरो है वह किथा बदीन का पैं प्रोग्राम में शामिल थी है बदीन का पान के बुध रही है मातली स्टेशन का पान के बुध रही है मेहरबानी अदी हसीना तुम असान प्रोग्राम में शामिल थी हो फौजन सुमरो के कलाम की फरमाइश की अथन हाजिर फौजन सुमरो जो फोल्डर भरे पो है असा फौजन सुमरो तमाम बेहतरीन रागी है न सिर्फ यहाँ मातली बदीन जिले में बुधी वेंदी है बल्कि पूरी सिंध में पूरी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बुधी वेंदी है जरूर तक दिल जा के फौजियां के आवाज़ में कलाम बुधाई गुट मोहम्मद तैयब थेबो खा हबीबुल्ला थेबो प्रोग्राम बुझी रहा अदाजन जो टों मैसेज है या लगभग मुझे ख्याल में चौथो मैसेज भी चई सकजे तो अदाजन जो असाजे शो में शामिल थो है मैसेज के जरिए चार दफा मेहरबानी अदा तवाजी तुम शो में शामिल थे आयो लख कुर्ब तवाजा लख एहसान असाज प्रोग्राम ही असा गड है फुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो अदा पठान फौजी साहब मेहरबानी तवाजी तवाज शो में शामिल थे आयो कुर्ब तवाजा अल्लाह से तुश आबाद रखे अड़े तरीके से तो शो में शामिल थी कर।

0: सखर जी फिजाइन में समायल मोहब्बत जो एहसास
1: GFM 88
0: सखर जो आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

कराची के छह जिले में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक। कराची सेंट्रल ईस्ट, कयामाड़ी, मलीर साउथ और वेस्ट के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो मुताबिक जून महीने दौरान कराची के छह जिले के माहौलियाती नमूने में वायरस जो पतो न पो। जुलाई में कश्मीर जिले के माहौलियाती नमूनों में वायरस की तस्दीक की हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दी खिलाफ जंग में वडे कीमत अदा कई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में कुर्बानियों जारी हैं। का भी सरजमीन दहशतगर्दी खिलाफ इस्तेमाल न थियण घुर्जे। सदर आसिफ अली जरदारी पारा दहशतगर्दी सबब मुतासिर थींदड़न जी याद में आलमी ॾियारे जे मौके ते मुतासिरन सां हमदर्दीअ जो इज़हार। सदर जो चवण हो त नौजवान नसल खे इंतिहा पसंदीअ खां बचाइण ज़रूरी आहे। गरु वज़ीर मोहसिन नकवी जो चवण हो त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ आलमी इतिहाद ज़रूरी आहे। बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितनाल ख़वारिज ऐं फितनाल हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि जेके रियासत ऐं अवाम विच में विचोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमालु थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे गॾियल अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मौजूदु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात कई। बलोचिस्तान जे अमून इस्तेकाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का बि खोट नाहे। नौजवान मुआशिरे जो सभ खां वधीक मोतरिक ऐं उमीद भरियो हिसो आहिनि। तंहिं करे खेनि बाइख़्तियार बणाइण ऐं क़ौमी तरक़ीअ में किरदार अदा करण जा मौक़ा फ़राहम करणु पायदार तरक़ीअ लाइ इंतिहाई अहम आहिनि। शाम जे परॾेही वज़ीर असद हसन अल-शुबान जे फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। दिफ़ा ऐं सलामती जे शोबनि में राब्तनि खे वधाइण ऐं पाकिस्तान ऐं शाम विच में ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्जाओ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान ऐं शाम विच में पुराणनि भाइरनि लाॻापनि खे उजागर कंदे आलमी अमून ऐं इलाक़ाई इस्तेकाम बाबति पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कयो ऐं गॾियल सलामती जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ सरकार आहे। PTI बानी शिफ़ा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापसि अडियाला जेल मुंतकिल। PTI बानी खे डॉक्टरनि सिहतमंद करार ॾिनो। वफ़ाक़ी वज़ीर अतातारड़ जी दावा। अतातारड़ जो चवणु आहे त डॉक्टरनि जी छह रुकनी टीम PTI बानी जो तिबी मुआइनो कयो। तिबी मुआइने वक़्तु पंहिंजे अस्पताल में शिफ़ा अस्पताल जा डॉक्टर बि मौजूदु हुआ। PTI बानी जे भेण उज़मा ख़ान बि मुआइने वक़्तु मौजूदु हुई। PTI कारकुननि सिक्योरिटी जो मसलो पैदा कयो। PTI बानी खे शिफ़ा अस्पताल ॿाहिरां सिक्योरिटी ख़दशनि सबबु पंहिंजे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। बानी PTI खे जॾहिं बि ज़रूरत हूंदी संदसि मुआइनो करायो वेंदो।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

त तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में अहिड़े तरीक़े सां शामिल थी सघो था। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं आरओ लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते। प्रोग्राम में शामिल कयूं था फौजा सुमर जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं उनखे उमेद त तव्हां ऐं असां सभु गॾिजी इंजॉय कंदा।

सजा सुमर जो खूबसूरत आवाज है तवाज सुंदर तमाते तो मुझे मिठा सही तवा सने प्रोग्राम में शामिल थी सको था बजरे एसएमएस है एसएमएस का जो तरीके का सोलो है आसान है जन दोस्तों जो मैसेजेस असन जी शो भी आया है तो वह भी पाजी प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं।

0: असांजे प्रोग्राम में बिरिया शहर खां आहे अवामी शायर आजिज़ अमानुल्ला विस्तड़ो ऐं चवनि था अनवर विस्तड़ो जो कलाम असांखे ॿुधायो ऐं डेडिकेट कनि था भूरो खां लाखो गुलाम सरवर बागाई ऐं अलह ॾितो खोखर अदा साईं महिरबानी तव्हांजी भाउ मुंहिंजा आजिज़ अमानुल्ला विस्तड़ा साहिब तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे तमामु पुराणा सीनियर लिसनर्स आहियो तव्हां हुन सां गॾोगॾु जेके जन दोस्तनि खे तव्हां कलाम डेडिकेट कयो आहे उहे बि तमामु पुराणा लिसनर आहिनि जीअं मोरो एफ एम एटी जा बहितरीन ॿुधंदड़ आहिनि साईं अलाए रितो खोखर साहब हुजे या गुलाम सरवर बागाई हुजे या भूरो खान हुजे या अवां हुजो तमामु घणी ख़ुशी थी मूंखे तव्हांजो मैसेज ॾिसी करे अलाह से तव्हांखे ख़ुशि रखंदो आबाद हुजो ऐं वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो असां सां गॾु आहे शहबाज़ अली खोसो डॉक्टर हसीना सुमरो ऐं चवनि था गुलाब खान असांखे मुख़्तियार शीदीअ जो कलाम ॿुधायो त तव्हांजी पसंदि जो मां तव्हांखे कलाम हिन शो में ॿुधाए चुको आहियां ऐं उहो फौज़ सुमरो जे आवाज़ में हुयो उमेदु आहे तव्हां ॿुधो हूंदो तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो ऐं तव्हांजे लाइ ई प्ले कयो हुयो महिरबानी तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो ॻोठु उमेद अली ज़रदारी खां गुलाम सरवर बागाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो चवे थो सर सलाम त वालेकुम सलाम साईं जा कहिड़ा हाल नवां जा ठीकु कयो त वेसाई काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजो मैसेज पंहिंजे पैनल ते पढ़ी करे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे तव्हां कीअं आहियो ठीकु कयो ऐं चवंदा प्लीज़ अताउल्ला ख़ान जो असांखे कलाम ॿुधायो ऐं डेडिकेट करे थो बुरो खान लाखो खे ऐं आजिज़ अमानुल्ला विसड़ो खे महिरबानी मुंहिंजा प्यारा भाउ तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो अदाजनि जो ॿियो बि ॻोठु उमेद अली ज़रदारी खां मैसेज आहे गुलाम सरवर बागाई भाउजनि जो ऐं उन में बि सलाम चयो अथनि त वालेकुम असलाम ऐं अताउल्ला जे कलाम जी हुते बि फरमाइश कई आहे ऐं डेडिकेट कयो आहे साॻियाई दोस्त बुरो खान लाखो ऐं आजिज़ अमानुल्ला विसड़ो खे महिरबानी प्यारा तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो तमामु घणी ख़ुशी थी आहे ऐं मुख़्तार शीदी जी कलाम जी फरमाइश कई आहे की अनॉन माण्हू मतिलबु उन नालो पंहिंजो कोन लिखियो आहे ऐं सिर्फ़ु इहो चयो आहे त मुख़्तार शीदीअ जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर तव्हांखे बि मुख़्तार शीदीअ जो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदासीं असां सां गॾु आहे ऐं मीर प्रकाश खां अब्दुल्ला महर ऐं चवनि था अस्सलाम अलैकुम त वालेकुम अस्सलाम भाउ अब्दुल्ला चवनि था भाई आपका शो नाइस है ज़बरदस्त है महिरबानी मुंहिंजा मिठा तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे रज़ा हुसैन ॻोठु बसीरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं खैरपुर तालको आहे फैज़गंज उतां खां ई अदाजन प्रोग्राम ॿुधे रहिया आहिनि ऐं चवनि था मेरी बेटी की सालगिरह आहे जिसका नाम बेटी की सालगिरह आहे जिसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा राजभर कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ वो स्कूल गए हैं जी हाँ बिल्कुल ॾाढो सुठो कमु आहे हुनजी सालगिरह आहे मल्हायो नंढियूं नंढियूं ख़ुशियूं हूंदियूं आहिनि ज़रूरु करणु घुरिजनि पर स्कूल वञी वियो आहे इहा अञा वधीक ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे छो जो असांखे पंहिंजे बचनि खे हिकिड़ो महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ॾियणो आहे त हुननि खे तालीम ॾियणी पवंदी दुनिया ॾिसो केॾी तरक़ी करे रही आहे दुनिया किथे वञी पहुती आहे ऐं अञा असां सिंध जा माण्हू टिकटॉक ते जेमहिल वञूं था त तेॾीमहिल असांजा जेके हिन दौर जा शाइर आहिनि वॾा वॾा शाइर जेके पाण खे वॾा वॾा शाइर सम्झनि था उहे नौजवान नसलनि खे ख़बर छा डिलीवर करे रहिया आहिनि उहे नौजवान नसल खे फॾो फसाद डिलीवर करे रहिया आहिनि हिकु हफ़्ते में तुंहिंजो पलान थींदो तोसां हीअं थींदो तोसां अहिड़े तरीक़े सां थींदो अहिड़े क़िस्म जी शाइरीअ ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे असांजे सिंधी नौजवान नसल जो पर असां जेके वालदेन आहियूं असांजो इहो इख़लाक़ी फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे बचनि खे इन टिकटॉक वारी सोसाइटीअ मां कढी पंहिंजी सोसाइटीअ में इन कयूं जिथे तरबियत टिकटॉक न करे असां ख़ुदि हुननि जी तरबियत कयूं ऐं उन्हनि खे असां तालीम जहिड़ो ज़ेवर ॾियूं पोइ चाहे नियाणियूं हुजनि या पुट हुजनि उन्हनि सभिनी खे असां तालीम जहिड़ो ज़ेवर ॾियूं इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु हिकु फ़र्ज़ जी न आहे या इन सॼे मुआशिरे में जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ आहे त असांखे गॾिजी करे उहो करिणो पवंदो पंहिंजे वालदेन जी खे अख पटणी पवंदी जेकर असां वक़्त सिर अख नथा पटियूं न यकीन कयो तमामु वॾे नुक़सान में असां ईंदासीं छो जो असांजो नसल जी जेका तरबियत थी रही आहे न यकीन कयो उहा तरबियत असां न पिया कयूं उहा तरबियत ख़बर आहे केरु पियो करे उहा तरबियत पियो करे टिकटॉक या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं एप्लीकेशन्स जेके असांजे नौजवाननि जी तरबियत करे रहियूं आहिनि उन में गैर इख़लाक़ी मवाद सां गॾोगॾु अलाए कहिड़े क़िस्म जो मवाद मौजूदु आहे जिथे ॿार उनखे ॾाढो ध्यान सां ॾिसनि था जेके नौजवान छोकिरा आहिनि उहा त छॾियो पर नंढा जेके ॿार आहिनि जिन जी उमिरि 5 खां 7 साल आहे जेकर उन्हनि जे हथ में बि वालदेन मोबाइल फ़ोन नथा ॾियनि त उहे दाहूं करण में शुरू थी वञनि था उन्हनि में ॿारनि जो बिल्कुलु कसूर न आहे मां इहो सम्झंदुसि त उन में कसूरवार असां ई आहियूं जो असां पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़े क़िस्म जी आदत ख़ुदि ब ख़ुदि विधी आहे अगरि का माउ घर में कमकार करे रही आहे ऐं उनजो ॿारु उनखे तंग करे रहियो आहे जेको उहो कमु न पई करे सघे डिस्टर्ब थी रही आहे त पोइ उहा छा थी करे उहा हिकदमि ॿार खे रिझाइण जे लाइ दिल विंदराइण जे लाइ उन जे हथ में मोबाइल फोन ॾेई थी छॾे ऐं पाण पंहिंजा ॿिया कम कार करण में शुरू थी वञे थी। त अहिड़ियूं जेके माइरूं आहिनि उन्हनि माइरुनि खे हथ ॿधी इल्तिजा कंदासीं त तव्हां ॿारनि खे मोबाइल फोन खां परे कयो। कमु जेको तव्हांजो रहिजे थो घर जो उन ख़ैरु आहे, भला जेकर उहो अधु कलाकु लेट थियो त को मसइलो कोन्हे, को तव्हांखे थोरी तकलीफ़ अचे थी, पर तव्हां पंहिंजे ईंदड़ नसल खे सिक्योर कयो, ईंदड़ नसल खे तव्हां महफ़ूज़ बणायो त जीअं असांजो ईंदड़ जेको नसल आहे न उहो इन क़िस्म जी जेकी गैर रवायती रस्मूं आहिनि, गैर रवायती जेकी हरकतूं आहिनि उन्हनि खां बची सघंदो। त प्रोग्राम में वक़्तु थिए पियो ब्रेक जो, हलंदासीं ब्रेक जे तरफ़, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वापसि अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जा ज़बरदस्त ज़बरदस्त सॉन्ग। तेसोड़ी कॾहिं बि न वेंदा, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क।
1: It's 12:30. खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान, रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
4: सरिया गार्डन टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
5: खुश खबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

उम्मीद आहे तव्हां ख़ैरियत सां हूंदा। जीअं त बिल्कुलु मां ख़ैरियत सां आहियां, ॾाढे फर्स्ट क्लास लॻो पियो आहियां, तव्हांजी दुआऊं आहिनि। मां उमेद कयां थो तव्हां बि बिल्कुलु ख़ैरियत सां हूंदा। महिरबानी मिठा। शहबाज खोसो पाण खे ॿधीन खां ॿुधी रहियो आहे, डॉक्टर सीना सुमरो पाण खे ॿुधी रहियो आहे, मुख्तियार शिद जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि। महिरबानी, मुख्तियार शिद जो कलाम बि अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, पर हिन वक़्तु असांजे प्लेलिस्ट में मौजूदु आहे अताउल्लाह ईसा खैलवी।

अपना शहर अपना घर सखर।

मुख्तार शिदे जो खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजूं समातूं अधु सिंधी अधु उर्दू सॉन्ग आहे ऐं दोस्तनि जी फरमाइश हुई, काफ़ी मैसेजिस आया हुया दोस्तनि जा त असांखे मुख्तार शिदे जो कलाम ॿुधायो त बाबा मुख्तार शिदे प्ले कयो आहे जेको तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि प्रोग्राम जे आख़िर में, उहे बि शामिल कंदा हलूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारा मिठा मोहबती माण्हू, असांजा भाउ गुलाब खान बहन साहब। वालेकुम असलाम मुंहिंजा मिठा प्यारा भाउ, तव्हां बि मोहबती इंसान आहियो साहब, असां न आहियूं ऐं असां तव्हांजा भाइर आहियूं। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। अदा जन फौजी पठाण खान इहो मैसेज कयो आहे ऐं चवे थो असांजा मैसेज पूरा कोन था पढ़ो। अदा तव्हांजा मैसेज जेके अचनि था न मूं वटि, जेके पहुचनि था, उहे मां पूरा पढ़ां थो। हाणे तव्हां लिखो था मैसेज सिंधीअ में, हाणे जेकर सिंधीअ में तव्हां मैसेज लिखो था त उहो अनकम्प्लीट थी मूं वटि पहुचे थो। उहो मिसिंग टेक्स्ट जे मतिलबु हिकिड़ी शिकिल सां मूं वटि पहुचे थो, जंहिंजे करे तव्हांजा मैसेज अगरि रहिजी था वञनि त अधु इन जे करे रहिबा हूंदा। बरहाल अदा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। बादल शेख पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे शहर वाडकीअ खां ऐं मुमताज़ लाशारी जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं प्रोग्राम जो वक़्तु हींअर पहुचण वारो आहे पुॼाणीअ ते। इनशा ताला हयाती रही नेक्स्ट जुमे ते शो जे दौरान तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि, तव्हां दिलजाए करे छॾियो। ॻोठु मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हबीबुल्ला महिरबानी तव्हांजी, लख रुपए लख अहसान तव्हांजा। ॻोठु उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बाघाई चवंदा, सर अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम। अदा ग़ुलाम सरवर भाउ, तव्हांजी पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो पर जेके ॿोल तव्हां लिखिया विया उहो सॉन्ग लाइब्रेरी में मौजूदु न हुजण सबबु अताउल्ला ईसा ख़ान खिलवीअ जो मां ॿियो हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो हुयो। उमेदु आहे त उहो बि अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो जेको तव्हां डेडिकेट कयो हुयो भूरो ख़ान लाखो खे ऐं आज़ ज़मानो लाबिस्तड़ो खे। त महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। खानवाण खां वाहिद बख़्श लाशारीअ जो मैसेज, सॉरी वाहिद बख़्श ख़ासखेरीअ जो मैसेज आहे ऐं चवनि था बेस्ट प्रोग्राम आहे मुमताज़ लाशारी ॿुधायो त हाल दादा। मुमताज़ लाशारी जूं ॿ टे फरमाइशूं वधी वियूं आहिनि त कोशिशि कंदासीं त मुमताज़ लाशारी तव्हांखे असां ॿुधायूं। त महिरबानी मुंहिंजा प्यारा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां चवंदा आहियूं त वञण खां पहिरियां कुझु चंद तव्हांखे ॻाल्हियूं चवंदा आहियूं। इहे चवंदा आहियूं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखंदा कयो पंहिंजनि दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो ऐं दुनिया आरज़ी आहे, फ़ानी दुनिया आहे, हिन दुनिया में का ख़बर न आहे केतिरा ॾींहं आहियूं ऐं केतिरा ॾींहं ज़िंदा आहियूं ऐं केतिरा पल असां वटि आहिनि। उन जे करे मोहबत वंडियो ऐं मोहबत में ई मज़ो आहे, मोहबत खां सवाइ कुल्फ़त में कुझु बि न आहे रहियो ऐं कुल्फ़त करण वारा माण्हू पाण सां गॾु क़ब्रुनि में बि कुल्फ़त खणी वेंदा आहिनि ऐं मोहबत ॾियण वारा माण्हू पाण सां गॾु मोहबत खणी वेंदा आहिनि पर दुनिया में बि पोइ ते पंहिंजे लाइ मोहबत छॾे वेंदा आहिनि। त उन मोहबत खे दाइम ऐं क़ाइमु रखणो आहे ऐं तव्हांखे अञा वधीक पंहिंजे औलाद जे लाइ, उन्हनि जी पढ़ाईअ जे लाइ, उन्हनि जी तरक़ीअ जे लाइ पाण पतोड़णो पवंदो, तॾहिं वञी दुनिया सां तव्हां विख विख में ॾेई करे हली सघंदा। त प्रोग्राम जो वक़्तु पुछियो ॼाणीअ ते, इनशाला ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ प्रोग्राम ई तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त। वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशारी प्ले करे थो वञा ऐं मुमताज़ लाशारी खे उमेदु आहे तव्हां बि इंजॉय कंदा, असां बि इंजॉय कंदासीं।

इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे गिरियल अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलूचिस्तान जे अहम शख्सियतनि ऐं सियासी क़यादत JHQ में मुलाक़ात कई आहे। बलूचिस्तान जे अमुन इस्तकाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवठ कई वई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का बि खोट नाहे। नौजवान मुआशिरे जो सभ खां वधीक मुतरिक ऐं उमीद भरियो हिसो आहिनि, तंहिं करे खेनि बाख़्तियार बणाइण ऐं क़ौमी तरक़ीअ में किरदार अदा करण जा मौक़ा फराहम करणु पाएदार तरक़ी लाइ इंतिहाई अहम आहिनि। पाकिस्तान दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में वॾी क़ीमत अदा कई आहे। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा ऐं बलूचिस्तान में क़ुर्बानियूं जारी आहिनि। का बि सरज़मीन दहशतगर्दी ख़िलाफ़ इस्तेमालु न थियणु घुरिजे। सदर आसिफ अली ज़रदारी पारां दहशतगर्दी सबबु मुतासिर थींदड़नि जी यादि में आलमी ॾियारे जे मौक़े ते मुतासिरनि सां हमदर्दीअ जो इज़हार। सदर जो चवणु हो त नौजवान नसल खे इंतिहा पसंदीअ खां बचाइणु ज़रूरी आहे। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो चवणु हो त दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ आलमी इतिहाद ज़रूरी आहे। PTI बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। PTI बानी खे डॉक्टरनि सिहतमंद करार ॾिनो आहे। वज़ीर अताउला तारड़ जी दावा अताउला तारड़ जो चवणु आहे त डॉक्टरनि जी 6 रुकनी टीम PTI बानी जो तिबी मुआइनो कयो। तिबी मुआइने वक़्त पिम्स में शिफा अस्पताल जा डॉक्टर बि मौजूदु हुआ। PTI बानी जी भेण उज़मा ख़ान बि मुआइने वक़्त मौजूदु हुई। PTI कारकुननि सिक्योरिटीअ जो मसइलो पैदा कयो। PTI बानी खे शिफा अस्पताल ॿाहिरां सिक्योरिटी ख़दशनि सबबु पिम्स अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। बानी PTI खे जॾहिं बि ज़रूरत हूंदी संदसि मुआइनो करायो वेंदो।

0: कराची में कुत्ते के डारण सबब सांगड़ वासी नींगर जिना अस्पताल में इलाज दौरान फौत हो डॉक्टर जो चवण है त नींगर के चार महीना अग कुत्ते डाढ़े जख्मी कर हो खेस वैक्सीन न लगराई वही हुई हलंदड़ साल जिना अस्पताल में कुत्ते के डारण सबब नव जना फौत थी चुका है जिकमाबाद ऐं सी आई ए पुलिस जीरो पॉइंट भरसां पंजाब वेंदड़ 19 अफगानिन खे गिरफ़्तार करे वरितो गिरफ़्तार अफगानिन शहरी जीरो पॉइंट भरसां सवारी जे इंतज़ार में हुआ त एक्साइज़ पुलिस खे गिरफ़्तार कयो पुलिस मूजिबि 19 अफगानी शहरनि खे बाईपास भरिसां गिरफ़्तार कयो वियो आहे जेके पंजाब वञी रहिया हुआ गिरफ़्तार अफगान शहरनि खे होल्डिंग कैम्प जे अमले हवाले कयो वियो आहे मंजूराबाद वेझो पुराणी दुश्मनीअ तां नौजवान गोलियूं हणी क़तल लाश अस्पताल मुंतकिल बासकुंडो वटि बनी में कमु कंदड़ 40 वरनि जो अलाउद्दीन कोसो मारिजी वियो आहे इतलाउ ते खाणो पुलिस पहुची मक़तूल जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो आहे ज़रियुनि जो चवणु आहे त 4 साल अॻु प्लाट जी मालिकियत आहे मक़तूल अलाउद्दीन कोसो तां करीम कोसो क़तल थियो हो वाके जी पलांद में अलाउद्दीन कोसो खे संदसि भाइटनि क़तल कयो आहे सखर में 8 महीननि जे ॿार खे अगवा करण जी कोशिश शहरनि ॿिनि औरतनि खे पकड़े वरितो गोलीमार वारे इलाइक़े मां ॿिनि औरतनि ॿारे तलाह पुट काशिफ खोसो खे अगवा करण जी कोशिश कई शहरनि ॿिन्ही औरतनि खे पकड़े पुलिस हवाले करे छॾियो पुलिस औरतनि खे तहवील में वठी वधीक कार्रवाई लाइ विमन थाणे ते मुंतकिल करे छॾियो ऐं मलीर नेशनल हाईवे लिंक रोड ते ट्रॉलर जो कोच खे टकर भॼणा फोर्थ रेस्क्यू टीम पहुची लाश जिना अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया फोतियुनि जी सुञाणप न थी सघी
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: फौजी बैरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताज

0: की और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला, आसिम हुसैन आराई।
2: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-196-8051।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
0: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

वफाकी हुकूमत पीटीआई बारी खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में बीहर नज़रसानी की दरख्वास्त दाखिल कर छी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफा रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज खत्म कर नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई वही। उन अग अदालत नज़रसानी दरख्वास्त एतराज लगाए वापस कई हुई। पीटीआई बारी जो तिबी मुआइनो शिफा इंटरनेशनल नपर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफाकी वजीर अतातारड़ जो इंकशाफ अतातारड़ जो चवणो आहे त डॉक्टर पारां तिबी सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ बानी पीटीआई खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अॾालिया जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में शिफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानी जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद हुई। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरत रस्ते अल शिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई हुनखे नज़र में रखी बानी

कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाक़ात थी चुकी आहे। इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन खां अलावा इलाज जारी आहे। डॉक्टर जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ़ जी ब्लड लेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। बानी पीटीआई बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है तो बलोचिस्तान है पाकिस्तान जो मुस्तकबिल एक है हमेशा लाए गड है फितना खवारिज फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसर जो प्रॉक्सीज आहिन जेके रियासत है अवाम विच में विचोटियों पैदा करण ला इस्तेमाल की रही हैं। दुश्मन जो समूरियों साजिशों कौम के गरियल अजम है रियासत के मजबूत ए फैसलाती रद अमल से नाकाम बनाईदी। ISPR मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलोचिस्तान के अहम शख्सियतों ने सियासी क्यादत के HQ में मुलाकात बलोचिस्तान के अमून इस्तकाम ए तरक्की में नौजवान के किरदार समेत मुख्तलिफ मामलों के ख्याल की बेवत कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है तो बलोचिस्तान में नौजवान लाए सलाहतन ए मौकन की का खोट ना है बलोचिस्तान जो अवाम में बलोचिस्तान की तकदीर बदलाए सके तो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03001।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो, डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

بار یتیم تھی ویندو آ پریشان پریئے لائے حق

त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न आहे, उन ते अमल न थियण बदकिस्मती आहे, ॻाल्हियूं ईअं न ही थींदियूं ऐं न ही वरी जमहूरियत ईअं हलंदी आहे। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाकात थी चुकी आहे। इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानी जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे, ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बेइलाज आहे। जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि, हुननि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।

कराची बिन दिन दौरान ब हयातियूं ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। कुते जे ॾारण सबब जिना अस्पताल में दाख़िल सांगड़ वासी नींगर दम धड़ी हवाले करे छॾियो आहे। डॉक्टर चवण आहे त नींगर खे चार महीना कुते ॾारे ज़ख़्मी कयो हो। केस वैक्सीन न लॻाराई वई हुई। हलंदड़ साल जिना अस्पताल में कुते जे ॾारण सबब 9 ॼणा फौत थी चुका आहिनि।

0: जगमाबाद में बिन नौजवानन जे कतल खिलाफ कौमी शाहरा ते लाश रखी धरणो ट्रैफिक मुअत्तल थी वई आहे। गढ़ी खेरो वासी इमाम जान ऐं बरकत अली जान जे वारसन लाश रखी कौमी शाहरा ते धरणो आयो आहे। सदन चवण आहे त नौजवाननि खे मीरामपुर थाणे जी हद में रिंद बिरादरी जे माण्हुनि गोरियूं हणी क़तल कयो आहे। जवाबदारनि ख़िलाफ़ कारवाई ताईं एतिराज़ जारी आहे। सखर में 8 महीननि जे ॿार खे अगवा करण जी कोशिश शहरीनि ॿिन औरतनि खे पकड़े वरितो। गोलीमार वारे इलाइक़े मां बेतला पुट काशिफ कोसो खे अगवा करण जी कोशिश कई। शहरीनि ॿिन्ही
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

आलम में मौजूद आहिन। फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वैक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803843।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड, मेहरापुर, कराची ए इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिल करने वाले केस में भी है नजरसाने की दरख्वास्त दाखिल कर छी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफा रजिस्ट्रार ऑफिस जहा एतराज खत्म कर नजरसानी की मुतफरक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई वही। इन अग अदालत नजरसानी दरख्वास्त एतराज लगाए वापस कई हुई। गोहर खान चौहान तो बानाल मुंतकिल इलाज जहा तफसील भी न बुधाया वा। सुप्रीम कोर्ट के हुकुम की भंजकड़ी कई वही है। जैसे अदालती हुकुम से अमल कर मुश्किल है तो जमहूरियत कि हल्दी। इस्लामाबाद में मीडिया से ालदे बैरिस्टर गोहर तो सुप्रीम कोर्ट के हुकुम में को भी मुंझारो न हो उनते अमल न थे बदकिस्मती है। गाल इन नाहन थन्दू ए नई वरी जमहूरियत इं हल्दी है।

कसम खणी चवां थो त पीटीआई बानी जी सेहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदस भेण जी मुलाकात थी चुकी, उहा ई ॿुधाई बानी जी सेहत कीअं। सेहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे, ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज

दिया है डॉक्टर्स की रिपोर्ट अवां भी दिसी वठो असां भी दिसंदासी अज भी नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स की गाल करे मजाक उड़ायो वेंदो आहे पीटीआई बानी भी मजाक उड़ायो हो जैं जो केतरी वीडियोस मौजूद आहिन उन्हनि खे एहसास न हो त बीमारी एक हकीकत आहे।

सुठो माहौल ठयो हो, खबर नाहे केर उनके खराब करे छे तो। पीटीआई बानी के अस्पताल आणण ते समूरो मुल्क खुश हो, हाँ मुल्क परेशान आहे तो ही छा पियो थे। कौमी असेंबली में गालंदे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजी चयो तो पीटीआई बानी जी भेनरन के शिफा अस्पताल में बंद कयो वयो, खबर नाहे ही सब केर पियो करे।

0: ठठे ज़िले में अरबें रुपयनि जे 465 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैरक़ानूनी अलाटमेंट जो स्कैंडल ज़ाहिर। नेब जी जांच बाद लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मीरपुर साकरो जे देह घारो में 465 एकड़ ज़मीन जी गैरक़ानूनी अलाटमेंट रद्द करे छॾी। लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मूजिब सुप्रीम कोर्ट जे 2012 ईस्वी वारे हुकुम तहत सरकारी ज़मीन जी खानगी अलाटमेंट ते पाबंदी आहे। पाबंदी बावजूद जालसाज़ी ज़रिए सॉल्ट वर्क्स नाले कंपनी खे ज़मीन ॾिनी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आहिन।
4: हाने यचन स्टोर नज बलोच पेट्रोल
5: 03204372 आई 02424601000।
6: आशाई फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा जगह जो डारियों जगह जा पावा पाइप डेढ़ ब चार छह नव बारह इंच में प्लेन कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 03014541 456 तौकीर अहमद 03006।

फेवरेट गाना है, मैं प्ले कर चुका हूँ आपके लिए। हमारा और आपका साथ रहेगा 5 से 7 बजे तक। मेरा बहुत फेवरेट गाना है, इस गाने को सुनिएगा मजे से। और 5 से 7 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। आसमान पे कोई बादल नहीं है, बहुत क्लियर माहौल है। दुआ कीजिए कि हल्के हल्के बादल आ जाए, ठंडी ठंडी बारिश हो जाए और मस्त हुआ सुनकर हम लोग इस बारिश को भी एंजॉय करें, अगर हो जाए तो। अगर नहीं हुआ तो ऐसी साफ मौसम में एंजॉय करें इस गाने को और एंजॉय कीजिए।

क्या बात है जना, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया असरार की बहुत बेहतरीन सी प्यारी सी वॉइस में। 5:20 टाइम इज राइट नाउ। शाम के 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। ड्राइव कर रहे हैं तो

0: ड्राइव. जी जनाब बिल्कुल, क्योंकि आपने मौसम का मजा भी लेना है. मौसम भले ही साफ हो लेकिन मौसम का, नज़ारों का, लोगों का, और मतलब ये जो सब चीज़ें रास्ते में आती हैं ना, बहुत कीमती होती हैं, स्पीशियस होती हैं, और इन सब को बहुत ज़्यादा मज़े से आप लोग इंजॉय करते जाएंगे तो आपका सफ़र बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा. वेल, हमारा फोन नंबर आप जरूर नोट डाउन करें जो कि हम आपको बताने लगे हैं, 03000113488, जिस पे कॉल करके आप हमारे साथ गपशप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, क्यों हैं और जनाब क्या कर रहे हैं, हमारे साथ शो को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. मुझे प्यारा मीठा जानी के रहे असा सबनी सा गरो गद खबर पेजी भी दिया है, कुर्बान अली खास खेली आहे.
1: बिल्कुल
0: इश्क हुआ बर्बाद हुआ. बेओ ठीक ठाक मजे में सफा वाह वाह वाह वाह वाह वाह. जाम छोरू जी हवाऊं इलाही बुद्धिमान, जाम छोरू जी ला हवाऊं इलाही थदी हुंदियूं. अच्छा कुर्बान खास खेली साहब, तवां की मुझी आवाज प्रॉपर अचे थी सही?
1: अचे थी पर मुकार के डबल में आवाज अचे थी.
0: डबल में आवाज अचे थी. हेलो कोई गल है, तवां एक टिकट में ब मजा वठो, डबल आवाज में एंजॉय कयो. मां तवां का एकरो सवाल क्या भला?
1: भले सवाल पुछो.
0: एड़ी केड़ी शय आहे जेका भजी तवींदी आहे पर आवाज न ईंदी आहे? माना उर्दू में वो बताएं तो ऐसी कौन सी वो चीज है जो टूट जाए तो आवाज नहीं करती है, लेकिन टूट जाती है. क्या
1: पाचूला?
0: साया. साया भी कभी टूटते हुए देखा है आपने? ये तुक्के पे तो हमारी सारी जिंदगी गुजर गई ठाकुर. माना तुक्को है यहाँ, तुक्को है यहाँ, दुक्को.
1: बिल्कुल
0: चलो ठीक है. तुम दुख को हलियो या कोन हलियो, पर तुम ये बुझाए तुझे गोठ में मौसम के की आहे? अच्छा कुर्बान भाई गानों के लिए बुझना चाहो था? केड़ी केड़ो गानो?
1: रात जा
0: तारा. इहो वरी कहजो अहमद मुगल जी. ओके ओके ओके जरूर बुधा. कें नाल करना चाहो? जी ओके बेओ. वालेकुम अस्सलाम कुर्बान भाई. जी जनाब हमारे साथ कुर्बान खास के लिए भाई थे और जनाब इनका कहना है कि मुझे गाना सुनवाए जाए. रात जा तारा छो था तू नहीं दे, चवन था तू नहीं दे. ओके जनाब, रात जा तारा अगर चवन था तो रात जे तारन जी गाल मने छो छो तो रात जा तारा कभी भी कूड़ नहीं चवन था. अड़ी भी असा सभी दोस्तों से गुड मौजूद आयो 5 to 7 ताई तक कॉल कर सको था. असा तक नंबर बुधाया वठा था शो जी भी कॉल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी जनाब लगे तो मुझे कॉलर भा अच्छी तो चुको है पर गल है छो ना तो. हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉलर भा. हेलो हेलो चलें जनाब कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और आप जहां कहीं पर भी हैं हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हमसे बात करें, गपशप करें. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: के रदा सबनी सा गदो गद. गुलाम अब्बास भाई तुम्हारी आवाज सफा डिस्टर्ब थी गई है, अलाए डबल डबल थी अचे, अजीब अजीब थी अचे. हाँ कितना प्या कॉल क्यों, कितना प्या कॉल क्यों अदा? अभी जानू खा. ओके गुलाम अब्बास भाई छा कंदा आयो? माशाल्लाह प्राइवेट जॉब तां जी की थेले सफा जबरदस्त. अच्छा गुलाम अब्बास भाई ये बुधायो तो जो कोई शय भजी कोई अड़ी शय जो भजी वेंदी आ पर आवाज नहीं दियो वो छा शय आ? दुको. अच्छा गुलाम हुसैन भा मां अहमद मुगल जो गानो चलाया के जे नारा से करना चाहो? जी जी
1: ओ जो दोस्त
0: वाह वाह वाह, पकोड़ा भी खाओ था, चावल भी पियो था, अकेला अकेला पेट में सूर पवन दवा ता मुझी साइड सखल जी साइड करे मुंह करे एक कोप चाय जो भी पियो है पकोड़ा भी खाओ हां तो जी ता पेट से सूर का बची जी वणो थैंक यू गुलाम अब्बास भाई, थैंक यू सो मच, एंजॉय कियो दोस्तों सा गाइस। जी जनाब, हम चाहते हैं कि आप भी इंजॉय करें और हंसते मुस्कुराते रहें। अब टाइम क्या हुआ चाहता है जनाब, 26 चाहते हैं आपके लिए जबरदस्त सा गाना एक, और आप हमें कॉल, चलिए जनाब एक और कॉल ले लेते हैं फिर उसके बाद गाना चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: रात थे थी तसूर जागन था।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, केरे सा सबनी संग करो?
3: जुहेब।
0: जुहेब साहब किथा कॉल किया था? लड़काने वाला खैर साची ब्याह है ने, खैर सा हो जमालो ब्याह से भाग के आ जो भाग के हाल चाल तब
3: अल्हम्दुलिल्लाह खैर
0: से मजे में कम छा कंदा हो? हां माशाल्लाह माशाल्लाह, कम छा कंदा हो जो भाग
3: कम कर गद कदम पर आए ड्राइंग
0: छाती भी आयो
3: ना भी अकेले
0: कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, अल्लाह ताला तमाम के ब्याह तमाम घड़ी कॉल के नहीं हुई। जी जी जी, कोई मसलो ना है। अच्छा ये बताओ, तहां के आज जको असा अहमद मुगल बुधायो ता के जे नाल करना चाहो?
3: अहमद मुगल मा पने बारे जे नाल आदमी में नाले करना,
0: सिर्फ ही सिर्फ बाबी जे नाले।
3: हां
0: वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जोए भाई, आपकी जिंदाबाद।
3: अल्लाह तां के खुश रख लो, रे एते मेटी का पूरी टीम के खुश रख दो।
0: थैंक यू जोए वाला, तां के
3: मैं दोस्त अब्दुल लखद जी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जोए बा, पांजो खास ख्याल रख जो असा के जरूर बुदंदा रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ बहुत प्यारे से जुहेब भाई फ्रॉम लाड़काना, और लाड़काने वाले तमाम दोस्तों को हम प्ले करके सुनाते हैं जनाब अहमद मुगल का, रात जाता रहा चवन था तू नहीं दे कभी को जनाब माता इंदुम परे जैंजी गाल थी तीन गाने में वो आला चाहे या कोना चाहे तमाम कॉल करे सको था, मुझे नंबर नोट डाउन कियो जरूर 03000।

0: It's 5:30 p.m.
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर ए आचर ते बगैर फीस रखंदा। माहिर अमरा नज़लो निचो मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में।

0: क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? ये शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की झड़ इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना मजबूत बनाए नए बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर
4: 83 15 5724। मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो।

0: नज़र हेॾे हूंदी आहे फोन पोइ पवंदो आहे, बसि मां बटन दॿाईंदो आहियां कॉल अटेंड करण वारो, बसि
1: जी हाँ माना सॉन्ग
0: डायरेक्ट दिल में अची वे
1: जी डायरेक्ट दिल में वे
0: दिल में वे
1: जी
0: डायरेक्ट ना डायरेक्ट वे
1: डायरेक्ट चक्कर बंद से अची वयो है
0: अलहदा छा फॉल्ट अची वे हुंदो को ना को यकीनी तौर ते असा ट्राई कंदा हूं त हले पर हाने इंशाल्लाह हलंदो तवा दिल जाए कयो
1: इंशाल्लाह मानवी चना हुंदा इस्पान आयो।

0: करी मां तव्हांखे पंहिंजो नंबर ॿुधाईंदो हलां त जनाब असांजो नंबर आहे 03000113 फ्रॉम द शो जी नेक्स्ट। हैलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केर असां सभिनी सां गॾु सनीता आवाज़ जानू तव्हांजी नथी अचे। हेलो योर डिज़ायर नंबर इज़ बिज़ी एट द मोमेंट प्लीज़ ट्राई लेटर। तो जनाब असां सभिनी सां गॾु अलाए हिकिड़ो भाउ हुयो जंहिंजी कॉल कटिजी वई आहे आवाज़ सही न पई अचे वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा प्यारा केर असां सभिनी सां गॾु। मुख़्तियार अहमद भाई ॻाल्हायो था। मुख़्तियार भाई किथां पिया ॻाल्हायो? लड़काणे खां। वेरी गुड। माना लड़काणे वारा असांखे ॿुधनि पिया निशियात पुॼे थी ऐं अच्छा मुमताज़ लाइ शरीफ़ कोई बि गानो ओके बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजी फरमाइश रखियनि ते ज़रूरु हलंदासीं। त इहो ॿुधायो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? अच्छा सही सही सही सही सही मां तव्हांखे बिल्कुलु मुताज़ लाशारी ॿुधायां थो तव्हां बिल्कुलु दिलि जाए कयो त कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? अच्छा हलो ठीकु आहे मां हींअर ई तव्हांखे ॿुधायां था दा मुख़्तियार भाउ
1: जी जी
0: गानो। थैंक यू सो मच दा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी जनाब हम चलाते हैं मुमताज लाशारी का कोई गाना जरूर अपने भाई मुख्तियार की फरमाइश पर और जो इरफान भाई थे उनकी इस प्रोग्राम इस घंटे के एंड में वो गाना चलाएंगे जो उन्होंने कहा था दिल में डायरेक्ट आ जाओ। तो इस गाने को सुनिएगा मुमताज लाशारी का जबरदस्त गाना है सुनिए और सुनते रहिए आई लव यू ऑल शो विद अशफाक नियाज़ी ऑन जी एफ एम 88 नेटवर्क।

पोलियो बूस्टर डोज बच्चों के तहफ्फुज की एक जबरदस्त और मजबूत ढाल है। हर बच्चे को पोलियो के खिलाफ इजाफी तहफ्फुज जरूर दें। अहद करें सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो बूस्टर डोज जरूर लगवाएंगे आप अपने बच्चों को, क्योंकि आपका एक कदम बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को एक बार फिर से बताता चलूं कि बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए बच्चों को पोलियो डोज जरूर दें, क्योंकि पोलियो के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद हर बच्चे तक तहफ्फुज है। बच्चों की बेहतर बूस्टर हर खुराक अहम है हमारे लिए। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। महफूज बचपन महफूज मुस्तकबिल, पोलियो के खिलाफ हर खुराक अहम है। आइए आइए मिलकर हर बच्चे को पोलियो के खिलाफ मजबूत तहफ्फुज फराहम करें। तो जनाब बिल्कुल पोलियो बूस्टर डोज बच्चों के मजबूत तहफ्फुज की एक ढाल होती है और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। और जनाब पोलियो के खिलाफ जो हमारी जिद्दोजहद है वो हर बच्चे तक तहफ्फुज

0: पहुंचाने का अज़्म होती है। आज से आप भी याद कर लें कि जितना हो सकेगा आप पोलियो की जो बूस्टर डोज है ये जरूर पिलाएंगे बच्चों को, और मुश्किल और दूर दराज इलाकों में भी हर बच्चे तक पोलियो से बचाव का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चे को बूस्टर डोज जरूर पिलवाएंगे, ये ऐद कर लीजिए। महफूज बचपन, महफूज मुस्तकबिल, पोलियो के खिलाफ हर खुराक हमारी अहम है। तो जनाब जहां जहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारी पोलियो टीमें, तो जनाब उनके मकामी लोग उनकी हेल्प करें, और दूर दराज और मुश्किल रसाई वाले इलाकों में भी कोई बच्चा पोलियो से बचाव से मुहिम इस बचाव मुहिम से महरूम ना रहे, ये हम सब का अज़्म होना चाहिए। क्योंकि जब हम पाकिस्तानी अज़्म कर लेते हैं तो यकीन जानिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जब पाकिस्तानी किसी बीमारी को ख़त्म करने का अज़्म ले लें तो फिर तो जनाब वो बीमारी ख़त्म होनी होती है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आप अपने इलाके मोहल्ले और शहर से इस बीमारी को ख़त्म करें, बच्चों से पोलियो की बीमारी को ख़त्म करें। हमें इसे स्टेप लेना होंगे जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, हिम्मत लेनी होगी और कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और तमाम पोलियो टीमों के साथ फ्रेंडली रहकर उनको वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो जहां तक बच्चे पोलियो के कतरे पीना चाहते हैं। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है और अपने बच्चों को उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए या नहीं पिलाए ये जरूर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मुझा प्यारा जानी के रसा सबनी सांग गडो
1: इसपाक बात करा अलन कुशा कहरा तबीयत सेहत तो सही है।
0: फर्स्ट क्लास मुझा मिठा के रसा सबनी सांग गडो
1: पांच भावा अली खान सुमरो।
0: अली खान सुमरो साहब कितना प्यार गायो केड़े शहर माओ
1: लड़काने वा
0: वा वा लड़काने वाला ताज खट्टी व्या बा
1: ये वा
0: आही ये सफा सफा ये रहंदा क्यों हमेशा
1: अल्लाह अल्लाह कुछ कंदी वारा तो सही।
0: अच्छा अदा यो तो बतायो ते तहां पोलियो जा फुरड़ा प्यारे आन पांजे बारन के लड़काना में
1: जीवा
0: पोलियो जा फुरड़ा प्यारे दा आयो तहां बारन के लड़काने में
1: हां वा प्यारी नयो टीम इंडिया।
0: हां माशाल्लाह माशाल्लाह कोऑपरेट कंदा आयो ना उन सा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह न सही की भरपूर न चावन होंदो आ सा
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: बिल्कुल
0: गुसाइंदा भी कोने क्यों पाड़े वारन के बुझाइंदा क्यों तो पोलियो तमाम घणी खतरनाक बीमारी आए पांजे बारन के भी बचायो न खाओ
1: ना ना इंशाल्लाह तरो पाड़े वारन के भी चंदा आयो दबा पांजे बच्चन के प्यारो जागे टी में देसना आयो टीम इंडिया उनन के वडी प्यारी नयो बाबा पियो बचड़ा
0: इंशाल्लाह। अच्छा अदा यो बुझायो मुजा प्यारा भा नालो छा बुझायो मा विसरी बम
1: अली
0: खान सुबरो गानो केड़ो बुझन चाहो था
1: जीवा
0: गानो केड़ो बुझन चाहो था आज
1: सागे गानो सही
0: डायरेक्ट वे दिल में बुधाया तो इरफान अली थेबो जी फरमाइश भी हुई तमा केंजे नाले ते करना चाहो
1: सा सबनी टीम जे नाले
0: बस थैंक यू
1: थैंक यू सा बुधो जना
0: सा बुधो हाय सदके वना या गाल थी ना
1: जी बात
0: ठीक है थैंक यू अदा अली सुमरो थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज़। जी जनाब अली सुमरो के बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाली पोट्रा स्टाफ लग जलूरी खां शो लाजवाब है। थैंक यू सो मच अदा तुम्हारा तमाम गुण थैंक्स तुम्हारा सा जो शो बुधो पाया जलूरी स्टॉप का मोहम्मद खान कुंभार, बेवफा जमाल कुंभार, मोहम्मद अली कुंभार, हाली पोट्रा स्टाफ लग जलूरी खां शो लाजवाब थैंक यू सो मच अदा हाने छा क्यों हाने शो जी नेक्स्ट कॉल था वठूं आई चाहूं था अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब केर असा सबनी सा गद आहे लगे तो गरजदार आवाज में
1: अरे मां लाड के कला रहा आप जवाब बिल्कुल जो थे अखन माजुर का प्रोग्राम बुदी रहे ना बिल्कुल बेहतरीन प्रोग्राम हले तो
0: वाह वाह वाह वाह जबरदस्त माने मजो होते तो प्रोग्राम में
1: हाय हाय हाय जो चक्कर की मतलब क्या चाल के जे क्या तारीफ कर जे था रे चंदा तक
0: थैंक यू यार थैंक यू मुझे इतनी तारीफ ना करो तो मां चेयर का गिरी ना पवा थैंक यू सो मच पान मिठाई होने लगे तक हर शय मिठी लगती है हर कैंकी आवाज मिठी लगती है यो बुझाओ जो हाँ गानो तो बुझाया ना आधा जानी यो कड़ो अव डायरेक्ट वे दिल में जो कदी जो मुख्य एक दोस्त फरमाइश कई है इरफान अली वह बुझाने वो आया तो कैसे ना करना चाहो
1: सजी संगत हवाले
0: वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त ही कलाक लड़काने वाला खटी बयान जो था इन कलाक में लड़काने वाले जी इलाही काल जायू आइन
1: बिल्कुल दादी दिल खुशी तो आए दो शामिल किया
0: वाओ
1: असली चांद छा गाल कया ने
0: अच्छा मुझे गानों भी बुधाई हलो कोई ना कोई यार पांजे एक ब लाइनों या कोई शेर? अच्छा अल्लाह अकबर, अल्लाह तव्हांजा सभु गम दूर करे, असांजी इहा ई दुआ आहे। इनशाला इनशाला ज़रूर ईंदी आहे सुमेरा, छो त उहा अञा पंहिंजी ज़िंदगी जे कमनि कारनि में आहे, त जीअं फारिग थींदी इनशाला ज़रूर ईंदी। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु इनशाला इनशाला तव्हांजी इहा बि ख़्वाहिश पूरी थींदी इनशाला। थैंक यू सर। तो बिल्कुल जनाब असां हलाए चुका आहियूं इरफान जी फरमाइश ते डायरेक्ट दिल में, त बिल्कुल इहा गानो डायरेक्ट ॿुधो, एंजॉय कयो।

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: دسترخوان بناسبتي ان كوكينج بوي سوفيكا اتماتلي
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असावट जगह जो

0: बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 0242460100

मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MADS MS सिंध, RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, माहिर अमराज गुर्दे पत्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर, नक कन गलो पुराणो नज़लो, निछू मथे जो सूर, अध मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फॉलिज, खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी,

0: गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सावरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधण ऐं औरतुनि में कद जो न वधण, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। टाइम हर अरबा ऐं ख़मीस ते सुबुह 10 खां 4 वॻे खां ताईं, जर्मन हर ख़मीस खां सुबुह ॾहें खां वठी शाम 5 वॻे ताईं।
1: दोस्तों के टाइम टेबल बुधाईंदा हलूं तो डॉक्टर साहब, हर अरबा, खमीस, जुमो, छंछर, आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जा मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जंहिंसां असां ॻाल्हि ॿोल करियूं था। सभ खां पहिरियां त असां डॉक्टर साहिब खे ख़ुशि आमदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो कीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु, अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: डॉक्टर साहिबु, ठीकु आहियो?
2: जेसीं अलाह ताला जा एहसान।
1: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पर इन खां पहिरियां आऊं दोस्तनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां लाइव कॉल जो, 0301-2196-8051 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल बि करे सघो था। कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहिब खां मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था। त पहिरियों डॉक्टर साहिब सां मुखातिबु थींदा। जी डॉक्टर साहिबु,
2: अउज़ु बिल्लाहि मिन शैतान जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहिरियों त सभु तारीफ़ूं उन रब पाक जूं जेको असांखे जीआरे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि ऐं ख़बर आहे त हर रोज़ इन टाइम ते नशर थींदो आहे, ऐं अहिड़े तरीक़े सां असांजी क्लिनिक जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक जेकी मेहरापुर शहर में मौजूदु आहे, ऐं एड्रेस तव्हांखे नोट करे नालो, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड। टाइमिंग असांजी सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज़ असांजा जेके ॾींहं आहिनि वेहण जा, उहे आहिनि हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछरु जो ॾींहुं ऐं आचरु जो ॾींहुं। उनखां अलावा अंगारे जो ॾींहुं असांजी मोकल हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया ॾींहं असां क्लिनिक ते मौजूदु आहियूं। सूमरु, अरबा, ख़मीस बि क्लिनिक जा डेज़ आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि, हुन में कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजी जीअं तव्हां शुरू में असांजो प्रोमो ॿुधंदा आहियो, त हुन में जेकी बि बीमारियूं आहिनि उन जे मुतालिक़ तव्हांखे आगाही ॾिनी हूंदी आहे, जंहिंमें बीमारियुनि में असां मादे जी बीमारी बि अव्हां ताईं डिस्कस कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु डिस्कस कंदा आहियूं, जॾहिं उनजा पेशंट असां वटि क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी ट्रीटमेंट बि कई वेंदी आहे। अलहमदिल्ला, उहो काफ़ी सारो हुन में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां। ऐं जॾहिं असां वटि के अहिड़ा केसिस वधी वेंदा आहिनि, हर असां वटि तव्हां ॾिसंदव त ॿिए मां टियों शख़्स मादे जी बीमारियुनि में ई मुंतकिल हूंदो आहे, ऐं असां वटि ईंदो आहे, ऐं जेको आहे सो उनजी जेकॾहिं असां वटि डाइग्नोस कराईंदो आहे त असां हुनखे मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करायूं, जंहिंमें हिकु टेस्ट जॾहिं पेशंट असांखे कुझु निशानियूं ॿुधाईंदो आहे तकलीफ़ जे हिसाब सां, त हिकु टेस्ट एच पैलोरी ज़रूरु कराईंदा आहियूं। एच पैलोरी इन जे करे कराईंदा आहियूं, जॾहिं उहो पेशेंट ईंदो आहे, मादे जी त हर को दाह कंदो आहे, कंहिंखे जलन रहंदी आहे, कंहिंखे यानी एसिडिटी थींदी आहे, कंहिंखे छा रोगर ईंदी आहे, पर कंहिं कंहिं पेशेंट अहिड़ा हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असांखे मानी खाइण सां ई जेको आहे पेट में सूरु पियो वञे, या जलन बि थिए थी, गॾो गॾु उल्टी बि अचे थी, कड़वाहट बि थिए थी, ऐं उन खां गॾो गॾु उहो अॻिते हली जेको
1: आहे मौज़ू खे जारी रखंदासीं। मुंहिंजो ख़्यालु आहे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, पहिरियां उन दोस्त खे शामिलु कंदा हलूं, इन खां बाद में वरी कॉलनि जो सिलसिलो बि जारी रहंदो, पंहिंजो मौज़ू बि कॉलनि सां गॾु जारी रखंदासीं। अस्सलामु अलैकुम।
3: وعلیکم السلام
1: سائیں مجھے اکیر صاحب کو گلائے
3: بہت مزہ ہی رحمان گلائے خانوان خان
1: بھلی کار چون تھا زہیر صاحب ٹھیک آئے ہو چھا پچھن دا ڈاکٹر صاحب کا مجھے سائیں
3: بھائی موکے جی بیماری آئے موکو آئے
1: اچھا پائل سائن
3: انہ جو کوئی علاج
1: بالکل علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب بٹ भली हलिया अचो, इहो इलाजु मुकमिल मौजूदु आहे, तव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत न आहे, छो जो जेके माण्हू ऑपरेशन कराइनि था उन्हनि खे वरी थी वञनि था। अलहमदिल्ला मशहूरु डॉक्टर, हिकु वॾो डॉक्टर तव्हां वटि मौजूदु आहे मेहरापुर शहर में, तव्हां भली सुभाणे ई हलिया अचो, रूबरू ॾेखारियोसि, इलाजु मौजूदु आहे, इनशाला तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो। वधीक FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। बिल्कुलु एग्ज़ेक्ट ईअं ई आहे, ऑपरेशन कराइण सां वरी थी था वञनि पिया, तंहिंजे करे तव्हां दवा डॉक्टर साहिब वटि कोन आया हूंदा, डॉक्टर साहिब वटि कोन आया हूंदा, ॿी जॻह ते विया हूंदा हुते हुते या कीअं, तंहिंजे करे तव्हां लाॻीतो इलाजु करायो डॉक्टर मंज़ूर साहिब खां। माशाल्लाह मशहूरु डॉक्टर अथव पूरी सिंध में, परे परे जा ॾिसो था पंजाब खां बलोचिस्तान खां माण्हू डॉक्टर साहिबु वटि ईंदा आहिनि। पाण प्रोग्राम में ॿुधंदा हूंदो त माण्हू पाण मैसेज ॾेई वेंदा आहिनि त साईं असांखे एतिरो माना रिज़ल्ट मिलियो। अलाह बहितर, अलाह साईं ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। तव्हां एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाए थो मज़ीद ऐं तव्हांखे इहो मशवरो ॾींदो, तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो। ठीकु आहे भाउ, थैंक यू। जी डॉक्टर साहिबु,
2: जी साईं, माशाल्लाह अॼु हिकु ॻाल्हि सां ख़ुशी बि इहा थी त असांजे अवाम में माशाल्लाह तमामु सुठो हिकिड़ो शऊर अची वियो आहे। यानी ॾिसो हिकिड़ो असां हर प्रोग्राम में असां ख़ुदि जॾहिं पेशंट्स खे या पंहिंजे अवाम खे ॿुधाईंदा आहियूं त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जा केसिस थींदा आहिनि, मिसलनि पाइल्स आहे या मौक़ा आहिनि, मिसल बवासीर आहे, त जॾहिं को बि ऑपरेशन डॉक्टर ॿुधाए थो भई माण्हू कराए था अचनि त वरी दुबारा थी वेंदा आहिनि, लेकिन पोइ शायदि असांजी इन ॻाल्हि खे केरु सीरियस न वठंदो आहे या एतमाद न कंदो आहे। पर इहा हक़ीक़त आहे जेकी अॼु ख़ुदा ते तव्हांखे जेको आहे सो पाण ॿुधाई, ज़ाहिर आहे उन जे तजुर्बे जी ॾाढो को अज़ीज़ हुनजो को मिट माइट को अहिड़ो ऑपरेशन करायो हूंदो जंहिंखे वरी दुबारा थियो हूंदो, तॾहिं ई हो छो जो हर ॻाल्हि केरु पंहिंजे तजुर्बे सां ई कंदो आहे। ऐं असांजा बि जेके इहे दावा हूंदा आहिनि, ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि या इलाजु जेको कंदा आहियूं त पंहिंजे तजुर्बे सां ई ऐं पंहिंजी स्टडी सां ई कंदा आहियूं। त इन जे करे अव्हांखे इहा ॻाल्हि वाक़ई जेको आहे सो हक़ीक़त आहे त जेको बि जेको आहे सो जेकॾहिं बवासीर जो ऑपरेशन कराए थो त हुनखे दुबारा थी वञनि था, छो जो इहो जड़ हुनजी ख़तमु नथी थिए। ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधाईंदा आहियूं त होम्योपैथिक उहा दवा आहे जेकी मर्ज़ खे जड़ खां वठी ख़ात्मो आणींदी आहे, चाहे पोइ उहो बवासीर छो न हुजे, चाहे स्टोन्स पथरियूं छो न हुजनि, चाहे जेको आहे सो नक जी हॾी वधियलु हुजे उनजो ऑपरेशन छो न हुजे, चाहे कहिड़ो बि मर्ज़ु हुजे, जॾहिं असां उनजो इलाजु कंदा आहियूं त उहो मर्ज़ु, हा कुझु टाइम ज़ाहिर आहे त उनखे दवा इस्तेमालु करणी पवंदी आहे, 4 महीना 5 महीना 6 महीना कंहिंजो कंहिंजो जेको आहे सो मिसाल को ॾिसो कंहिंखे पुराणो दमो आहे, पुराणी जोड़नि जी तकलीफ़ आहे, पुराणी अहिड़ा अमराज़ आहिनि, हूअं जो मेडिकल जी दवा सारी ज़िंदगी खाए, पर जेकॾहिं कुझु अरसो होम्योपैथिक दवा खाइबी त उन ऐं बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे, हुनजा साइड इफ़ेक्ट आहिनि, हिन जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे, त उन सां पेशंट रिकवर न सिर्फ़ु रिकवर थींदो वेंदो आहे बल्कि गॾो गॾु तंदुरुस्त बि थींदो वेंदो आहे। जी हा, सो असां अचूं था पंहिंजे मौज़ू जे तरफ़। त मां ॻाल्हि पई कई त एच पायलोरी हिकिड़ो बैक्टेरिया, हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में नंढी आंडरे जे हिसे, पहिरें हिसे में वञी वेही रहंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो उनजे हुजण सां, यानी उन उहो हिकिड़े क़िस्म जो दुश्मन हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में वेंदो आहे, असांजे मादे खे डिस्टर्ब कंदो आहे, ऐं पोइ जेको आहे सो उनजे करे जेकी मां तव्हांखे तकलीफ़ ॿुधाई त पेट मानी खाइण सां जेको आहे पेट में सूरु पइजी ईंदो आहे, कंहिंखे उल्टी थी वेंदी आहे, कड़वाहट थी वेंदी आहे, एसिडिटी थी वेंदी आहे, जलन थी वेंदी आहे, पोइ गॾो गॾु इहा जॾहिं तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त वरी मत जेको आहे सो वॾे आंडरे में बि जेको आहे सो इहा जेको सो जरासीम अची वेंदो आहे, जंहिंजे करे पोइ यानी हिकिड़े ॿ टिनि क़िस्मनि जूं शिकायतूं थींदियूं आहिनि। फिर मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई कंहिंखे मानी खाइण सां जल्दी सूरु पइजे, कंहिंखे वरी ईअं थींदो आहे जो केरु मानी खाईंदो आहे कुझु टाइम खां 2-3 कलाकनि खां पोइ हुनखे शदीद सूरु पवंदो आहे। इहा बि जेको आहे सो हिकिड़ी ख़ासि अलामतूं आहिनि, ऐं इहे जेको आहे सो ॿुधाईंदा हलूं त एच पायलोरी यानी हेलिको बैक्टेरिया वायरस आहे, जंहिंखे घणा मज़ाक कंदा हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि, लेकिन इहो हिकिड़ो जरासीम आहे हेलिको बैक्टेरिया जेको कंहिंखे बि थी सघे थो, ऐं इन जे थियण सां जेको आहे सो पेशंट यानी सवली सिंधी में चऊं त मैदे जी अल्सर थी वेंदी आहे, जंहिंजे करे पेशंट तकलीफ़ में अची वेंदो आहे। अॻिते हली जॾहिं इहा तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त पोइ इन मां मैदे जो यानी अल्सर मां कैंसर बि थी सघे थी, इन जे करे घणा इनखे सीरियस न वठंदा आहिनि। ऐं असां वटि मशहूरु बसि हिकिड़ो कैप्सूल आहे जेको रोज़ु माण्हू राति जो खाईंदो, असां उहो कैप्सूल खाईंदासीं, अव्हांखे ख़बर आहे त इन अहिड़े क़िस्म जी दवाउनि जा साइड इफ़ेक्ट्स केॾा ख़राब आहिनि। उहे कैप्सूल अॻिते हली पंहिंजी तव्हांजे जिस्म जूं जेकी हॾियूं हूंदियूं आहिनि उहे कमज़ोरु करे छॾींदो आहे, ऐं उहे भुरभुरियूं थी वेंदियूं आहिनि, ऐं उन खां पोइ दुनिया जी का बि पेन किलर उनखे यानी फ़र्क़ु न ॾींदी आहे। उन सां अॻिते हली हुनजे अव्हांजी मर्दानगी ते असरु पइजी वेंदो आहे, तव्हांजी जेको आहे सो ताक़त ख़तमु थी वेंदी आहे, लेकिन इहे साइड इफ़ेक्ट्स आहिनि, कंहिंजी नज़र घटिजी वेंदी आहे, कंहिंजो को मसइलो थी वेंदो आहे, लेकिन हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहो आहे त जल्दी असांखे फ़ाइदो पए, पोइ चाहे इंजेक्शन मां पए, चाहे ड्रिप मां पए, चाहे 1000 रुपया ख़र्चु करण सां पए, पर जल्दी पए ऐं आरज़ी छो न उहो आरज़ी फ़ाइदो हुजे पर हिते जेकॾहिं असां मुकमल कंहिंखे कुझु टाइम ॾींदा आहियूं त हिते कुझु टाइम दवा माण्हू खाइण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि पर जेके पेशंट्स असां वटि अची चुका आहिनि ऐं कुझु टाइम जेको हुननि असांजे चवण ते दवाऊं खाधियूं आहिनि त उहे अहिड़े जेके मूज़ी अमराज़ आहिनि उन्हनि मां अलहमदिल्ला उन्हनि खे छुटकारो मिली चुको आहे जंहिंजा व्यूज़ उहे ख़ुदि FM रेडियो ते लाइव बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं असां वटि क्लिनिक ते अची बि जेको आहे सो लाइव रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि जंहिंमां कुझु व्यूज़ आहिनि जेके अॼु बि अवां ताईं ॿुधाईंदासीं लेकिन पहिरियां हिन बीमारी जे बारे में अवां ताईं इहा आगाही पहुचाईसीं त अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बीमारी आहे उनजे करे जेको आहे सो तव्हांखे निंड बि न अची सघे थी तव्हांजी जेको आहे सो बेचैनी थी सघे थी तव्हां डिप्रेशन जा पेशंट थी सघो था तव्हां रत जी कमी में अची सघो था तव्हां कमज़ोरी में अची सघो था तव्हां खोड़ सारी बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे इन जे करे इन जो होम्योपैथिक में तमामु कामयाबु इलाजु आहे ऐं इन खां रोकथाम जे लाइ अव्हांखे जल्द अज़ जल्द जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी अव्हांखे शिकायत थिए थी जेके तव्हांखे ॿुधाई आहे त तमामु क़रीबी कंहिं सुठे गैस्ट्रोलॉजिस्ट वटि या होम्योपैथिक के सुठे फिज़िशियन खे ज़रूरु ॾेखारियो इन जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं थींदियूं आहिनि एच पैलोरी हिकिड़ी ब्लड टेस्ट थींदी आहे लेकिन आउं सजेस्ट कंदो आहियां एच पैलोरी स्टूल जी टेस्ट जेकी हूंदी आहे पाखाने जी जेकी टेस्ट हूंदी आहे उनमें एंटीजन मौजूदु हूंदो आहे ऐं उहो जरासीम नज़र अची वेंदो आहे ऐं उनखां पोइ खोड़ सारियूं ॿियूं बि टेस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो यानी जंहिं हिकिड़े क़िस्म जी अव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायूं त कैमीरा यानी उनजी टेस्ट जहिड़ी थींदी आहे त कैमीरा आंड्रे में वेंदी आहे ऐं उनजी पोइ मुकमल उनमें ख़बर पवंदी आहे त उन में बि जेको आहे सो इहो जरासीम मौजूदु आहे या न आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इन जे करे लेकिन एतिरनि वॾनि टेस्टनि खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे त की तव्हां सुठे डॉक्टर खे ॾेखारींदव त उन में अव्हांजो वक़्तु बि बचंदो अव्हांजो पैसो बि बचंदो ऐं अव्हांखे जेको आहे सो जल्दी शिफ़ा बि थी वेंदी अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे यानी मां जेकी बीमा टेस्ट जी ॻाल्हि बि कई त यानी घणा तव्हां एंडोस्कोपी ज़रूरु ॿुधो हूंदो हिनखे एंडोस्कोपी चइबो आहे जेको जेको आहे सो टेस्ट कई वेंदी आहे लेकिन इन्हनि टेस्टुनि खां इन टाइमिंग ख़राबु थियण खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे तव्हां असां वटि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कॾहिं बि अचो अहिड़े क़िस्म जी का बि तकलीफ़ आहे त अलहमदिल्ला हुन में बिल्कुलु शिफ़ायाबी थींदी इन में पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखंदा कयो कोशिशि कंदा कयो त छो जो बीमारी किथां ॿाहिरां कोन ईंदी आहे पंहिंजे पेट जे रस्ते वात जे रस्ते वेंदी आहे जॾहिं तव्हां अहिड़ी का शयूं इस्तेमालु कंदो त तव्हांखे इहा तकलीफ़ वधी सघे थी इन जे करे ॻाढ़ो मिर्च असांजो दुश्मन आहे ॻाढ़ो मिर्च तमामु घटि में घटि इस्तेमालु कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां मानी तव्हां पंहिंजे टाइम ते ज़रूरु खाईंदा कयो यानी जेको टाइम आहे राति जो तक़रीबन मां जे अठे सुम्हण जे टाइम खे थोरो वक़फ़ो मिली सघे ऐं तव्हां थोरो मानी हज़म थी सघे अहिड़े तरीक़े सां खाधे पीते खां पाणी जेको आहे सो ज़रूरु अॻे थोरो पैदा कयो खाई पी मानी ऐं जल्दी पाणी पीअण बि जेको आहे सो मादे खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तरियल छो फ्रूट तमामु हिकिड़ो मादे खे ऐं जेको आहे सो साफ़ु रखे थो ऐं ख़ुशबूदार रखे थो ऐं तकलीफ़ुनि खां जेको आहे सो बचाइजो पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़्यादा कयो चांहि जो इस्तेमालु बंदि कयो खीर जो इस्तेमालु अवां पंहिंजे मामूल में आणियो इनशाला तव्हां अवां बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदो ऐं सहतयाबु थी वेंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो जेके बि इहे असां वटि जेके ॿाहिरियूं शयूं जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो बर्गर वग़ैरह या मुर्गनि गिज़ाऊं इहे तमामु हानिकार आहिनि ऐं नुक़सानकार आहिनि इन्हनि खां तव्हां काफ़ी बची सघो था ऐं जेको अॼुकल्ह जो दौरु आहे डिप्रेशन जो दौरु आहे ऐं अवां जेको आहे सो घणा घरनि में वेही करे घणी मोबाइल इस्तेमालु कंदा इन खां बहितर इहो ई आहे त अवां ॿाहिरि जेको आहे सो स्पोर्ट्स में जेको आहे सो हिसो वठो कुझु रांदियुनि में कुझु वॉक में त इन सां बि जेको आहे सो तबियत ते तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदो पए थो तव्हां डिप्रेशन खां बची सघो था बेकार ॻाल्हियुनि खां बची सघो था बेकार ख़्यालातनि खां बची सघो था सुठा ख़्यालात हूंदा ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़री सघे थी अवां खोड़ सारी बीमारियुनि खां जेको आहे सो बची सघो था जी सर
1: तमामु बहितरीन दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां लाइव अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचरु ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि वज़रीअ लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था 0301 91 8051 0301 एकी छियानवे अठ सौ एकवंजा।

0: एहसन साहब खे चवंदासीं त उहे बि कुझु बीमारियुनि बाबति ॿुधाइनि असांजे मौजूज़ ॿुधंदड़नि खे जेके दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु, हफ़्ते जा 6 ॾींहं क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनखे बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, पाइल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। 0301-9196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि।
1: जीअं त असां माहिर अमराज़ कुझु बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, जीअं गुर्दे पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जे खंघि, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंगु सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि में न वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
0: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। 0301-9196-851 प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं महिरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। अक्सर करे मरीज़ लाइलाज थी करे वॾनि वॾनि इस्पतालुनि मां, वॾनि वॾनि शहरनि मां वापसि थी करे वरी बि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां हर इलाज मौजूदु आहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे। डॉक्टर साहबु इलाजु कंदो आहे ऐं यकीननि अलाह ताला जे हुकुम सां ई रिज़ल्ट मिलंदो आहे, माण्हुनि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। जॾहिं शिफ़ा मिले थी तॾहिं इंसान जी पंहिंजी दिलि हिकिड़ी मुतमैन हूंदी आहे। त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं महिरापुर FM 94 जो ई आवाज़। हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं महिरापुर FM 94।
2: लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिकर छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: खां शाम पंजे वगे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजनि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। जेके मरीज़ सिहतयाब थी वञनि था, शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी हूंदी आहे, त हिकु व्यूज़ उहे ईंदा आहिनि असांजे क्लिनिक ते या वरी असांजे स्टूडियो में डॉक्टर साहिब वटि अक्सर करे ईंदा आहिनि, त उहे पंहिंजा व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि त असांजे एफ एम ते हलाइजो, जीअं उहे ॿुधी करे ॿियनि खे बि हिकिड़ो फ़ाइदो पहुची सघे। त हिकु मरीज़ आहे जेको पहिरियां मेडिसिन वठी साहिब खां ऐं हू सिहतयाब थी वियो आहे, त उन जा व्यूज़ तव्हां ताईं पहुचायूं था, अचो सभु ॿुधूं था।
1: हाणे जो आहे लिफ़ हुई, टंग ख़राबु थी वई, केतिरा टाइम थियो ऐं कॾहिं ख़राबु थी, कीअं ख़राबु थी, ॿ अढाई महीना थी विया, पोइ कंहिंखे ॾेखारियो पहिरियां, बिल्कुलु, लेकिन उन्हनि तव्हांखे चयो त टंग जेको आहे सो सही आहे, ख़राबु थी वई आहे, टंग ख़राबु थी वई आहे, ऑपरेशन थींदो, लेकिन बाद में तव्हां एफ एम ते ॿुधो ऐं एफ एम ते ॿुधी करे हिन नंढे खे तव्हां वठी आयो, हीअ टंग हुई पुटु, हलो हाणे टंग मथे कयो, हींअर टंग जेकी आहे सो मतिलबु सही आहे, हूअं हेॾी सुजी वई, टंग फाटण जहिड़ी थी वई, सख़्तु थी वियो ऐं हली बि न पियो सघे, हाणे बाबा हली ॾेखारो। हली बि सघे थो, घुमी बि सघे थो, फिरी बि सघे थो, सवा मां 90% जेका ठीकु थी वियो। लड़ा जो नालो छा आहे? मेहर अली। अच्छा, तव्हांखे तकलीफ़ या हली सघो पिया, सूरु हुयो न, ऐं हाणे हली सघे थो, फ़ाइदो आहे, फ़ाइदो पवे थो हाणे, तव्हां पुछो न टंग में फ़ाइदो आहे हलो था, चलो ठीकु आहे, बसि हीउ पुछणो हो, वॾी महिरबानी।
0: दोस्तों, ही व्यूज़ तव्हां ताईं पहुचायासीं, जेको मरीज़ हो जलाणी। डॉक्टर साहिब, किथां जो जलाणी साहिबु? अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं डॉक्टर साहिब, मरीज़ हिकिड़ो आयो ऐं उहो जलालाणी साहिबु ठीकु थी वियो हो, त दोस्त अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, जीअं मेहरापुर एफ एम 94 जो हीअ आवाज़ अव्हांजे समात में पहुचे पियो। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहिया आहिनि, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था, 0301-91-8051 कंहिं बि बीमारी बाबति तव्हां मालूमात वठी सघो था, बज़रिया लाइव कॉल शामिलु थी सघो था। असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर। अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचरु, सूमरु, अंगारो मोकल हूंदी आहे, डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक बंदि हूंदी आहे, बाक़ी हफ़्ते जा 6 ॾींहं डॉक्टर साहिब जी क्लिनिक खुलियल हूंदी आहे। डॉक्टर साहिबु, तव्हां छा महसूसु कंदा आहियो जॾहिं माण्हू ईंदा आहिनि, हिकु दफ़ो दवा वठी वञनि था, ॿीहर दवा वठी वञनि था, या ॿ दफ़ा, टे दफ़ा, या कॾहिं कॾहिं पहिरें ई हफ़्ते में जॾहिं अचनि था, उहे सिहतयाब थी वञनि था ऐं तव्हांखे ॾेखारींदा आहिनि त साईं असीं बसि चेकअप कराइणा आहियूं, बाक़ी ठीकु थी विया आहियूं?
2: अॼु साईं, बिल्कुलु ज़ाहिरी आहे त तमामु घणी ख़ुशी थींदी आहे, ख़ुशी इन जे करे बि थींदी आहे जो हिकिड़ो पेशंट हुयो ऐं हुन जेको आहे सो काफ़ी

0: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-91-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-91-8051। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे, मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बुर्दी साहब खे ख़ुश आमदी चवंदा। बुर्दी साहब छा पुछंदा भाडा साहब खां?
1: लूण जेकी आहे उहा पियूं था त पोइ असांजी ब्लड प्रेशर सही थो रहे, जंहिंमहिल नथा पियूं त असांजी ब्लड प्रेशर कम थो रहे।
0: अच्छा, लूण पियो था त पोइ सही थो रहे, नथा पियो पोइ वरी तव्हांजो ब्लड प्रेशर घटि थो थी वञे। टेबलेट वग़ैरह खाईंदा आहियो छा ब्लड प्रेशर जी? घणे टाइम खां वठी
1: आहे सर? टेबलेट वग़ैरह इलाही इस्तेमाल कया आहिनि सर, कोई फ़र्क़ु नथो पए।
0: कोई फ़र्क़ु नथो पए पियो, माना बी पी तव्हांजो लो रहे थो।
1: जी जी।
0: कहिड़ियूं शयूं ज़्यादा इस्तेमालु कयो था खाइण पीअण में?
1: सर इहा दाल जी मुङ।
0: जी
1: सर, सब्ज़ी असां दाल जी मुङ खाऊं था।
0: अच्छा, दाल जी मुङ या मुङनि जी दाल खाईंदा
1: आहियो? मुङनि जी दाल।
0: अच्छा, मुङनि जी दाल खाईंदा आहियो न? मुङनि जी दाल, सब्ज़ी, वॾो गोश्त वग़ैरह बि खाओ था?
1: जी सर।
0: वॾो गोश्त बि खाईंदो
1: आहे न सर?
0: इहो खाईंदो कर न, वॾो गोश्त जंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थियो, हाई हुजे न उहो न खाए, जंहिंजो लो हुजे उनखे खाइणु खपे। हा दा
1: सर, वॾो गोश्त जेको आहे असांजो वरी हेपाटाइटिस जो मसलो
0: आहे। अच्छा, हेपाटाइटिस जो मसलो आहे, माना मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि। ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु, तव्हांखे ॿुधाए थो।
1: जी जी सर।
0: ओके ओके। जी डॉक्टर।
2: जी सर, बिल्कुलु। लो ब्लड प्रेशर जूं वजूहात तमामु घणियूं आहिनि, छाजे करे लो ब्लड प्रेशर थींदो आहे ऐं लो ब्लड प्रेशर थी वञे थो त पोइ हुन में छा तकलीफ़ थींदी आहे। एक्चुअल जीअं मां पहिरीं ॻाल्हि कई त हुनजा वजूहात तमामु घणी ज़्यादा पाण ॿुधायो त मूंखे हेपाटाइटिस आहे, यानी मुख़्तलिफ़ उनखे बीमारियूं, हेपाटाइटिस जे करे ज़ाहिर त ॿियूं बि तकलीफ़ूं थी वेंदियूं आहिनि, रत जी कमी, जिगर जी तकलीफ़, मैदे जी तकलीफ़, त इन्हनि जे करे जेको आहे सो जिस्म में पाणीअ जी कमी, डिहाइड्रेशन जी कमी थी वेंदी आहे, रत जी कमी थी वेंदी आहे, ऐं माण्हू ख़ासि करे परेशान रहणु शुरू कंदो आहे, डिप्रेशन में अची वेंदो आहे, जंहिंजे करे पोइ हुनखे रत जी कमी जेको आहे उन सां गॾोगॾु छा थींदो आहे जो खाद ख़ुराक बि माण्हू घटाए छॾींदो आहे। त ज़ाहिर त ग़िज़ा जी कमी ऐं इन्हनि शयुनि जी कमियुनि जे करे जेको आहे लो ब्लड प्रेशर रहणु शुरू थींदो आहे। नमक विझी इस्तेमालु करणु इहो बींग अ टेम्पररी टाइम त बहितर आहे, लेकिन इहा का ट्रीटमेंट कान्हे का, इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन वक़्त जो पूराव करणो हूंदो आहे जेको ब्लड प्रेशर घटि हूंदो आहे उनखे जेको आहे अप करण जे लाइ, यानी असांजो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 खां, नॉर्मल माण्हू जो 120 खां 180 ताईं हुजणु खपे, ऐं उनखां जेकॾहिं घटिजी वेंदो आहे, इहो बि यादि रखे पेशंट त जेकॾहिं घणा चवंदा आहिनि त हाई ब्लड प्रेशर ख़राबु आहे, लेकिन मां चवंदुसि लो ब्लड प्रेशर तमामु इंताई ख़राबु आहे, छो जो जेकॾहिं लो ब्लड प्रेशर घणो थी वेंदो आहे त उहो पेशंट पोइ अॻिते हली हुन में हाइपो में अची वेंदो आहे, यानी बेहोश बि थी सघे थो ऐं पोइ अॻिते हली हुनजी यानी हुनजी मौत बि वाक़ई थी सघे थी। इन जे करे बहितर इहो ई आहे त हुनजो जल्द अज़ जल्द हुनजी ट्रीटमेंट करणु घुरिजे, ग़िज़ा जो पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखे। ग़िज़ा में ॾिसो मिसलनि हिकु त अॻे ॿुधायो त हेपाटाइटिस जो पेशंट आहे, अहिड़े क़िस्म जे पेशंट खे ॾिसी पोइ जेको आहे सो को बि ग़िज़ा का बि दवा पोइ माण्हू ॿुधाए सघे थो, छो जो ईअं ॿुधाइणु इंतिहाई ग़लति आहे। फ़िलहालु उनखे ज़रूरु इहो चई सघंदासीं त कोशिशि करे त जेको आहे सो पाण खे धूप खां, उस खां, जेको आहे सो गर्मी खां पासे, छो जो जीअं हुनजो पसीनो निकिरंदो त हुनखे ब्लड प्रेशर हुनजो अञा लो थींदो, ऐं उनखां पोइ खाद ख़ुराक पाण खे बुख न ॾियारे ऐं पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा बहितरु हूंदो। फ्रूट उनखे तमामु घणो इस्तेमालु करणु घुरिजे, तमामु पपीतो मां चवंदो आहियां त तमामु हिकिड़ो बहितरु हूंदो आहे मैदे जे लाइ ऐं जिगर जे मराज़नि जे लाइ। आलू बुख़ार तमामु जेको आहे सो बहितरु आहे ऐं इन सां बि जेको आहे सो काफ़ी सारो हुनखे जेको आहे सो फ़ाइदो पहुची सघे थो, पर जेके चवंदुसि त रूबरू ॾेखारे त वधीक बहितरु आहे,
0: वधीक बहितरु थींदो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी, मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। बिल्कुलु डॉक्टर साहिबु, जेका ॻाल्हि कई हिन वक़्तु त हाई ब्लड प्रेशर खां लो ब्लड प्रेशर इंतिहाई ख़तरनाक हूंदो आहे, छो जो लो ब्लड प्रेशर में, घटि ब्लड प्रेशर में इंसानु जॾहिं बेहोश थी वञे थो त उनजो रिकवर थियणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो कॉल जी तरफ़ वेंदासीं। किथां जो कॉलर हूंदो? अस्सलाम वालेकुम।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाई।

खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए मसल ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर ते सुबह 10 का शाम 5 वगे ताई मरीज जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर ए आचर याद रखंदा मरीज के दवा स्टोर दा वठनी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो नब मर्दन औरतन में वजन जो न वधन उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301-96-8051।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएम।
1: गलत नहीं, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता। ना कि बंदूक की नोक पर शनाख्ती कार्ड निकाल कर उसके हवाले से लोगों को बेदर्दी से शहीद करे। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इसी हवाले से केपीबी में दहशतगर्दी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि घुस बैठिए फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक हैं, उनसे वो मसाइल हासिल कर रहे हैं। मसाइल का गंदोरा पीट कर बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़े दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल वर्द का बाजार गर्म हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए।
2: बलोचिस्तान के दरपेश मसला गालन जरिए हल थे घुर्जन, जो मसलन की आड़ में बंदूक खड़े वो मोहबे वतन नो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के खिताब, शहबाज शरीफ चो बलोचिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पुठियां दुश्मन मुल्क हथ है। असा फील्ड मार्शल से गड़ी कराची का चमन N25 शाराए तामीर कर रहा आयो। बदकिस्मती से मनसूबे से कम कदड़ मजदूर के शहीद किया पे वे। मजदूरी कंदड़न के सुणप के बुनियाद से कत्ल कर जायज ना है। बलोचिस्तान वसीलन से पे हक सूबे आवाम जो है।

0: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमालु थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जी GHQ में मुलाक़ात। बलोचिस्तान जे अमन अमान इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। फील्ड मार्शल चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का खोट न आहे। खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स जे ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्तीअ में सरगर्म फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान जा 49 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं पुलिस ॿिन्ही सूबनि में गॾियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। KP जे बनू उत्तर वज़ीरिस्तान औरतसे ऐं ख़ैबर वारनि इलाइक़नि में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख़्वारिज सां तालुक़ु रखंदड़ 12 ख़ारजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो, जॾहिं त बलोचिस्तान जे मस्तोंग मच खुज़दार ऐं पंजगोर वारनि इलाइक़नि में बि ऑपरेशन दौरान 37 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हथियार, AIDs ऐं मोटर साइकिलूं बि हथ करण जी दावा।
1: को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे, अगर आप उसको राइट नहीं देते। मैं तो ऐसे चेयरमैन ये कहता हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मजीद में बैठूं। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आए? कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम मजीद ना रहे? सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है।
2: तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर उज़्मा ने शामिल होना। दूसरी बात ये थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गिर्द की हुजूम न खड़ा हो।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
6: म बहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ यचो बहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोमे का शाम पंजे वगे ताई मरीजन आहिन छंछर आचर ते बगैर फीस के चेकअप किया वेंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर ता वठनी पवंदी।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी जलन दिली जो वधा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी कान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जन सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 2196 आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
1: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तयाब आहिनि
0: हाणे ई अचो महिरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437 ऐं 0242460100
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
2: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस त ॿुधा
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूदु आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वग़ैरह बाज़ार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर। आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास, नज़्द रेलवे लाइन, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई,
5: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

0: मैं जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब की हमशिया की उनके साथ मुलाकात, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनकी उस सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुकी।
1: कसम खड़ी चवान तो पीटीआई बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। सेहत के मामले के सियासत के बारे चाड़न न घुर्जे। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ चो तो पीटीआई बानी की अख बेहतर थी रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लाइ भी इलाज जारी है। माजी में नवाज शरीफ की सेहत से मजाक उड़ाया वो हो, पीटीआई बानी पान भी मजाक उड़ाया जैसे केतर ही वीडियोज मौजूद हैं। उन्होंने हाँ एहसास थो होंद तो बीमारी एक हकीकत होंगी है।

भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितने ख्वारिज से ताल्लुक रखंदड़ 12 खारिजन के मारे वो। बलोचिस्तान के मस्तोंग मच खुजदार ए पंजकोर वाले इलाक में फितने हिंदुस्तान से ताल्लुक रखंदड़ 37 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वो। ऑपरेशन दौरान वे मकदार में बारूदी मवाद हथीज ए मोटरसाइकिलू हथ कई व्यू। मुल्क के अमन अमान इस्तेहकाम के नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशों के असरायती अंदाज में नाकाम बनाया व्यो। मुल्क में दहशतगर्दी के नासुर के मुकम्मल खात्मे मुहिम जारी रखी वी।

पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मफ़ामती याददाश्त नामे ते सयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स जो हदफ़ मुक़ररु। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़।

0: ठठे जिले में अरबे रुपयनि जी 435 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैर कानूनी अलॉटमेंट जो स्कैंडल ज़ाहिर। नेब जी जांच बाद लैंड यूटिलाइजेशन खाते मीरपुर साकरो जी देह घारो में 435 एकड़ ज़मीन जी गैर कानूनी अलॉटमेंट रद्द करे छॾी। लैंड यूटिलाइजेशन खाते मूजिब सुप्रीम कोर्ट जे 2012 वारे हुकुम तहत सरकारी ज़मीन जी खानगी अलॉटमेंट ते पाबंदी आहे। पाबंदी बावजूद जालसाज़ी ज़रिए साल्ट वर्क्स नाले कंपनी खे ज़मीन ॾिनी वई हुई। ज़मीन खे 15 ॾींहनि अंदरि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एमए DHMS सिंध RHMB इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हर जुमे छंछर ऐं आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन खां वठणी पवंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड पॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपाटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी

जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर, 03003 8569।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज, अब गैर जरूरी खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राबता स्किन एलर्जी एनी रोड में।
1: अस्सलाम वालेकुम। अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: जबरदस्त।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़े दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्लोगारत का बाजार गर्म हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए।
3: बलूचिस्तान के दरपेश मसला गाल जरिए हल थियण घुर्जन। जो मसलन के आड़ में बंदूक खणे वो मोहब वतन नो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के खिताब। शहबाज शरीफ चयो तो बलूचिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पुठियां दुश्मन मुल्कन जो हथ है। असा फील्ड मार्शल से गड़ी कराची का चमन एन 25 शाराए तामीर कर रहा आय। बदकिस्मती से मनसूबे से कम कदड़ मजदूर के शहीद किया पे वे। मजदूरी कदड़न के सुणप के बुनियाद से कत्ल कर जायज़ ना है। बलूचिस्तान के वसीलन से पे हक सूबे के अवाम जो है। जैसे 40 सूबा गड़ी हल्दा तद ही मुल्क तरक्की कद। खैबर पख्तूनख्वा ए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज ए फितना हिंदुस्तान जवणों जहाँ दहशतगर्द मारज वाया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ए पुलिस बिन्हीं सूबन में गडल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। KP के बनू उत्तर वजीरस्तान और अगसई ए खैबर वारन इलाकन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखंदड़ 12 दहशतगर्दन के मारे वो। बलूचिस्तान के मस्तोंग मच खुजदार ए पंजगोर वारन इलाकन में भी फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक रखंदड़ 37 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो। ऑपरेशन दौर में बारूदी मवाद हथियार IEDs ए मोटरसाइकिल हथ कई वो। मुल्क के अमन इस्तेहकाम के नुकसान पहुंचाने वाली कोशिश के असरते अंदाज में नाकाम बनाया वो। मुल्क में दहशतगर्दी के नासुर के मुकम्मल खात्मे मुहिम जारी रखी वी।

0: पीटीआई बानिया जी अलशफा अस्पताल बदरा पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने बाद बीहर अडियाला जेल मुंतकिली। हुकूमत समूरी सूरत हाल जो जिम्मेवार पीटीआई के ही करार दे छो। वफाकी वजीर अता ताड़ चयो अलशफा अस्पताल बाहरा ए रस्तन ते पीटीआई कारकुन गड थियण खां पोए वाली सूरत हाल के नजर में रखी पीटीआई बानी के पिम्स अस्पताल आंदो वयो, जिते अलशफा अस्पताल के डॉक्टर्स ए उज़्मा खान की मौजूदगी में पीटीआई बानी जो मुआयनो कयो। डॉक्टर्स पीटीआई बानी की सेहत के मुकम्मल तौर ठीक करार दिनों, जैं बाद खेस सुबह जो 5 वगे बीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वयो। तारिक फजल चौधरी चयो तो बानी पीटीआई जा जरूरी तिबी मरहला मुकम्मल थी विया आहिन, सेहत के मामले ते सियासत न की वञे।
1: कानून है इनको छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे, अगर आप उसको राइट नहीं देते। मैं तो ऐसे चेयरमैन ये कहता हूँ मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं। कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आए, कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम मस्जिद ना रहे। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आए दो।
2: तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर उस्मान ने शामिल होना। दूसरी बात ये थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गेट पे हुजूम ना खड़ा हो, बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया है।
3: कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इन्हें अदालत की दरखास्त दाखिल करेंगे। पाकिस्तानी कौम को यह फैसला करना होगा ये मुकदमा कहाँ लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पर लड़ना।
0: पीटीआई बानिया के अलशिफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआयनो कराए बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करने हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।